एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से ठीक बाद यानी 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हमारे केंद्र से सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:45। रामचरितमानस 9:10 पर और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा 10:20 पर। क्षमा करें 9:20 पर। 9:40 पर होगी विशेष वार्ता राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, जिसके वार्ताकार हैं श्री भरत सिंह। गाने पुराने जमाने के आप सुन सकेंगे 10:00 और 10:30 पर गाने नए तराने नए। युववाणी कार्यक्रम होगा 5:00 और इसमें आज होगा फोन करें गीत सुने, और पणिहारी कार्यक्रम 5:30 पर। फिल्म संगीत 6:05 पर और राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर 6:20 पर। किसानवाणी होगा 7:00। 7:30 पर आप सुनेंगे ICC विमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। 9:00 का समय रहेगा पुनः क्रिकेट कमेंट्री का। 8:45 पर समाचार संध्या होगी। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 9:00 को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतरे। और राज्य में 2-3 दिन से लगातार हो रही बरसात से दक्षिण पूर्वी इलाके तरबतर, जल स्रोतों में पानी की बेहतर आवक। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रपति ने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थी

में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षक दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक शिक्षा ही प्रदान नहीं करते बल्कि विद्यार्थी का जीवन गढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। चाकसू के टूंबली का बासके उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉक्टर दिव्येंदु सेन को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण

0: अभिषेक, श्रृंगार और भजन कीर्तन हुए। साथ ही दही हांडी के आयोजन में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में रिमझिम बरसात के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्री कृष्ण जन्म पर 31 तोपों की सलामी दी गई और विशेष आतिशबाजी की गई। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जुटे। रात 12 बजे बाद भगवान श्री कृष्ण के विशेष दर्शन हुए और तोपों की सलामी दी गई। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई। ब्रज क्षेत्र में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर में माहौल देर रात तक कृष्णमय रहा और लोगों ने धूमधाम से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया।
1: करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में देर रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्म के साथ ही मंदिर परिसर जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की आस्था का आलम ये रहा कि मंदिर का दरबार खचाखच भर गया। देर रात तक बधाई गीतों और कृष्ण भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। आज जन्माष्टमी के दूसरे दिन मंदिर में नंदोत्सव और आनंद उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें राज परिवार की ओर से छाक लुटाई जाएगी। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें नजर आ रही हैं। मंदिरों में केसर युक्त दूध दही से छिड़काव कर उत्सव का आनंद लिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा में और कल अजमेर में रोड शो करेंगे। वहीं प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए जनसंपर्क साध रहे हैं। इससे पहले कल राज्य के 309 नगरीय निकायों में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 41 जिलों के 10,245 वार्डों के लिए चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसलमेर में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में ईवीएम मशीन का केंद्रवार रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। धौलपुर के सेपेयू में कल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने आमजन से बिना भयभीत हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। इसके अलावा सभी स्थानों पर स्वीप गतिविधियों के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। लोगों को रोचक और नए नए तरीकों से लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लेने का आह्वान किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। गौरतलब है कि इन तीनों विषयों के परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायत के बाद दोबारा ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। और अब मौसम। राज्य में श्रावण माह में कम बारिश होने के बाद अब भादों में बरसात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। पिछले दो दिन से हो रही बरसात से राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाके तरबतर हैं। सवाई माधोपुर में कल से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला आज भी जारी है। रात भर मध्यम और तेज बरसात से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पिछले दो दिन से हो रही बरसात से नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई है। करौली में भी कल दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। दोनों ही जिलों में बारिश को देखते हुए स्कूलों में आज अवकाश रखा गया है। अजमेर के माखुपुरा, घुघरा, कायड़, दोराई, पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से बरसात का सिलसिला जारी है। इससे लोगों को तेज उमस से राहत मिली है। भरतपुर में भी कल से ही बरसात हो रही है। वहीं रुदावल क्षेत्र के डुमरिया गांव में बकरी चराने गए एक युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्वी

0: पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश की गतिविधियों में 8 तारीख से कमी आने की संभावना है।
1: बंगाल की खाड़ी से बनकर आए वेनमार्क लो प्रेशर एरिया के असर से पिछले दो दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा रही है। विशेष रूप से कोटा संभाग के अलावा जयपुर, भरतपुर, सिकौती क्षेत्र, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों तक पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान खासकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा और बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतरे। और राज्य में 2-3 दिन से लगातार हो रही बरसात से दक्षिणी पूर्वी इलाके तरबतर, जल स्रोतों में पानी की बेहतर आवक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं सुमन कल्याणपुर की इस भक्ति रचना से।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वंदना कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना अनूप जलोटा की आवाज में।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं विशेष वार्ता राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। वार्ताकार है श्री भरत सिंह।

भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल अक्षर ज्ञान कराने वाला व्यक्ति नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें ईश्वर के समकक्ष दर्जा दिया गया है। एक बालक जब अपने घर की दहरी लांघ कर विद्यालय की चौखट पर कदम रखता है, तो उसका यह नया संसार शिक्षकों की उंगली थाम कर ही आकार लेता है। आज जब हम चारों ओर तीव्र गति से बदलते तकनीकी युग को देखते हैं, जहां सूचनाओं का समंदर एक क्लिक पर उपलब्ध है, तब एक शिक्षक की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इंटरनेट आपको सूचना दे सकता है, लेकिन वह ज्ञान, विवेक और संस्कार केवल एक जीवंत शिक्षक ही दे सकता है। मशीनें डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं, परंतु चरित्र का निर्माण केवल एक गुरु का संस्पर्श ही कर सकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां हासिल करना या रोजगार पाना नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई मानवीय संवेदनाओं, बौद्धिक क्षमताओं और नैतिक मूल्यों को जागृत करना है। आज के इस डिजिटल दौर में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आया है। कक्षाएं स्मार्ट हो गई हैं और ब्लैक बोर्ड की जगह स्क्रीन ने ले ली है। परंतु इन तमाम बदलावों के बावजूद चॉक और डस्टर के साथ एक शिक्षक का वह धैर्य, वह स्नेह और छात्र की हर गलती पर उसका मार्गदर्शन, यह कभी पुराना नहीं पड़ सकता। एक शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, जो खुद जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमान करता है। आज 5 सितंबर का ये विशेष दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। आज हम भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मना रहे हैं। यह वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके जन्मदिन को इस रूप में क्यों मनाया जाए, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा था कि मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की बजाय यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे सबसे अधिक गर्व महसूस होगा। जब हम भारत में शिक्षक और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला और श्रद्धेय नाम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा जीवन शिक्षण और ज्ञान की साधना को समर्पित था। आंध्र प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक अपने अकादमिक ज्ञान का परचम लहराया। राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक संरचनाओं जैसे सड़कों, पुलों, कारखानों और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है। किसी भी देश का वास्तविक आधार उसकी भौगोलिक सीमाएं नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक चेतना होती है। एक समर्थ, समृद्ध और न्यायप्रिय राष्ट्र का निर्माण केवल सुसंस्कृत, शिक्षित और अनुशासित नागरिकों से ही संभव है, और ऐसे नागरिकों के निर्माण का गुरुतर दायित्व समाज में केवल एक ही व्यक्ति के कंधों पर होता है, शिक्षक। कहा जाता है कि माता पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में जीना कैसे है। एक कुम्हार

जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को सुंदर आकार देता है, ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिक्षार्थियों के जीवन को ज्ञान, संस्कार और अनुशासन से गढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित है, लेकिन असल मायने में शिक्षा वह है जो हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाए। हमारे शिक्षक हमें सिर्फ विषय पढ़ाते ही नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देते हैं। वे हमारी गलतियों पर डांटते जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे उनका असीम स्नेह और हमारा उज्जवल भविष्य जरूर छुपा होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि जब तक देश में शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान और स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक राष्ट्र अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता। वे कहते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य के भीतर मानवता का विकास करे। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि एक शिक्षक अपनी साधना और निष्ठा से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है और पूरे राष्ट्र को वैचारिक दिशा दे सकता है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में शिक्षक यानी गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। प्राचीन काल से ही गुरु केवल साक्षरता देने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह चरित्र, धर्म, राजनीति और जीवन मूल्यों का पथ प्रदर्शक होता था। आचार्य चाणक्य का उदाहरण राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की शक्ति का सबसे जीवंत प्रमाण है। जब मगध का राजा धनानंद अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा से एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर अखंड भारत का सम्राट बनाया। चाणक्य ने ऐतिहासिक वाक्य कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने न केवल देश के बल्कि विदेशों से आए छात्रों को ज्ञान देकर भारत को विश्व गुरु के पद पर सुशोभित किया। राष्ट्र निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी आयाम शामिल हैं। शिक्षक इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण है। ज्ञान यदि चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में हो तो वह विनाश का कारण बनता है। शिक्षक बच्चे को ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता का पाठ पढ़ाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला राष्ट्र बनाना है तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि समाज के 3 सदस्य यह बदलाव ला सकते हैं, और वो हैं पिता, माता और शिक्षक। एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिकों में अंधविश्वास और कुप्रथाओं के स्थान पर तार्किक सोच हो। शिक्षक शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की भावना जगाता है। वह छात्रों को केवल क्या सोचना है यह नहीं सिखाता, बल्कि कैसे सोचना है इसका प्रशिक्षण देता है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं, जातियाँ, धर्म और संस्कृतियाँ विद्यमान है। विद्यालय की कक्षा वास्तव में लघु भारत होती है। शिक्षक सभी पृष्ठभूमि से आए बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ने, खेलने और सोचने का अवसर प्रदान करता है। वह छात्रों के मन से भेदभाव, जातिवाद और राष्ट्रीयता की भावनाओं को समाप्त कर उनमें वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्रीयता का भाव बढ़ता है। आज की कक्षा में बैठने वाला शिक्षार्थी कल का वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सैनिक, राजनेता या उद्यमी होगा। एक कुशल शिक्षक बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा देता है। राष्ट्र की आर्थिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी युवा शक्ति कितनी कुशल है। शिक्षक छात्रों में तकनीकी, व्यावसायिक और जीवन कौशल विकसित करता है। आज का युग तकनीकी, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का युग है। ज्ञान अब केवल किताबों या शिक्षक तक सीमित नहीं है, यह एक क्लिक पर उपलब्ध है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका कम हो गई है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, बल्कि शिक्षक की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। एक शिक्षक इंटरनेट पर फैले सूचना के महासमुद्र में

0: से सही और प्रामाणिक ज्ञान को चुनना सिखा सकता है। वह छात्रों को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सही उपयोग और डिजिटल नैतिकता के प्रति जागरूक कर सकता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जब छात्र तनाव, अवसाद या असफलता के डर से गुजरते हैं, तब एक शिक्षक मित्र और परामर्शदाता बनकर उनका हाथ थाम सकता है। एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का रिश्ता विश्वास, सम्मान और अनुशासन की नींव पर टिका होता है। इस संबंध में पवित्रता को बनाए रखने के लिए शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति मर्यादित व्यवहार और उच्च नैतिक आचरण होना अनिवार्य है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और शिक्षार्थी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें शिक्षक अपने आचरण और ज्ञान से आकार देते हैं। जब शिक्षक अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का पालन करता है, तो छात्रों के मन में उसके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है। छात्र अपने शिक्षकों की कही गई बातों से ज़्यादा उनके आचरणों और व्यवहारों से सीखते हैं। इसलिए शिक्षक का नैतिक आचरण छात्रों के जीवन भर के संस्कारों की नींव बनता है। शिक्षक का व्यवहार हर परिस्थिति में संतुलित और गरिमापूर्ण होना ही चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद हमेशा शालीनता से होने चाहिए। व्यंग, अपमानजनक टिप्पणियां या हतोत्साहित करने वाली भाषा छात्र के आत्मविश्वास को तोड़ सकती है। शिक्षक के लिए सभी शिक्षार्थी समान होने चाहिए। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या मेधा के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार शिक्षक की मर्यादा के विरुद्ध है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच पेशेवर और नैतिक दूरियों का होना बेहद जरूरी है, ताकि संबंध हमेशा सुरक्षित और सम्मानजनक बने रहें। नैतिक आचरण केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि यह शिक्षक के भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ है, जो उसके कर्तव्यों के प्रति सचेत रखती है। मूल्यांकन, मार्गदर्शन और सलाह देने में शिक्षक को पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। हर छात्र की सीखने की गति और मानसिक क्षमता अलग होती है। एक नैतिक शिक्षक क्रोध या झुंझलाहट दिखाने के बजाय सहानुभूति और धैर्य के साथ छात्र की समस्या को समझता है। शिक्षक का आचरण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा, करुणा, सहयोग और मानवता के गुणों का विकास करे। शिक्षक की कुर्सी केवल अधिकार की नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी की होती है। जब एक शिक्षक अपनी मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन करता है, तो वह न केवल एक बेहतर छात्र तैयार करता है, बल्कि एक स्वस्थ, अनुशासित और संस्कारित समाज की नींव भी रखता है। मर्यादा और नैतिकता ही वह प्रकाश है जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को रोशन करता है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में शिक्षक ही है। नीति का स्पष्ट मानना है कि शिक्षकों को पुनः समाज में वह सम्मानजनक स्थान दिलाना होगा जो प्राचीन काल में प्राप्त था। यह नीति शिक्षकों को पारंपरिक रटंत विद्या से हटकर अनुभवात्मक शिक्षण, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करने का अधिकार देती है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण क्षमता से योगदान दे, तो समाज और सरकार को भी शिक्षकों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। समाज में शिक्षकों के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करना होगा। इसके लिए शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण पद्धतियों का समय समय पर उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को लिपिकीय या अनावश्यक गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि उनका पूरा ध्यान केवल अध्यापन और छात्रों पर केंद्रित रहे। शिक्षक को बेहतर कार्य वातावरण और आधुनिक शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं शिक्षण क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुनें। यहां मुझे कबीरदास जी का यह दोहा याद आ रहा है कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण की पूरी नींव शिक्षक के त्याग, समर्पण और ज्ञान पर टिकी होती है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें ईश्वर की प्रतिमा प्रकट कर देता है, उसी प्रकार एक शिक्षक एक साधारण बालक को गढ़कर उसे देश का जिम्मेदार और योग्य नागरिक बनाता है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर पूरे समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री भरत सिंह की विशेष वार्ता, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं साजों पर धुन।

ये कठपुतली फिल्म की धुन थी जिसमें सैक्सोफोन पर थे सुरेश यादव। अगला धुन है रोटी कपड़ा और मकान से, इस पर भी सुरेश यादव हैं सैक्सोफोन पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साजों पर धुन, एफएमएटिक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं और अब आपको इंतज़ार होगा कार्यक्रम गाने पुराने जमाने सुनने के लिए। तो सुनते हैं फिल्म हम जोली का ये गीत, कार्यक्रम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गाने पुराने जमाने में। अगला दो गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज में। फिल्म का नाम हम दोनों।

आकाशवाणी की चिरमी चैनल से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

गाने पुराने ज़माने के, इसमें अभी हमने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को, फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कटी पतंग में।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। पहला तराना सोनू के टीटू की शादी, इस फिल्म से है, अरिजीत सिंह, सिमरजीत कुमार, अनीता भट्ट की आवाजों में है।

आकाशवाणी नागौर से अभी आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म का नाम लुक्का छुपी। आवाजें अखिल और धनु भानुशाली और भृगु पाराशर की हैं।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए एफएमडिक्स 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

0: सलामे इश्क ये गीत अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, अनजान की भूल। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अभी तो जीले इस फिल्म से। इंदिवर की बोल है, सपन जगमोहन का संगीत।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से। कैफी आजमी का लिखा गीत था, कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
5: नसीब इंसान का।
4: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के सुरों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: खुशबू थी, दैट वॉज ब्यूटिफुल। आई थिंक वो खुशबू और इतनी शांति जो है, ये बहुत ही, आई थिंक आई वॉज सो हैप्पी टू बी हियर।
4: अच्छा, ये बताइए कि शूटिंग से नाता किस तरह से जुड़ा था आपका, और क्या आपने शूटिंग से ही शुरू किया था या किसी और खेल से शुरू किया था?
3: सो बचपन से हमने स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज किया था, मेरे पेरेंट्स ने, माय फादर, तो मेरे भाई और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में थे।
4: लेकिन क्या माता पिता के साथ भी स्पोर्ट्स की परंपरा थी?
3: ऐसे तो नहीं थी, लेकिन मेरे फादर खेलते थे, उनके कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे जो चाचा है वो क्रिकेट खेलते थे, तो आई गेस हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स, हम खाते पीते बस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते रहे। तो आई गेस दैट इज हाउ हम इंट्रोड्यूस हुए स्पोर्ट्स से। तो कोई भी चीज बिना स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ पे शुरुआत ही नहीं होती थी और एंड भी नहीं होता था। तो वैसे ही शूटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ है, वो मैं 8th क्लास में थी और हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल है, तो वहाँ पे एक शूटिंग रेंज, एक मेक टू शिफ्ट शूटिंग रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया था थ्रू NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। तो वो एक स्कूल लेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स था जो हम 8th एंड 9th क्लास में करते थे, तो वैसे हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा था।
4: तो सबसे पहले गन तब हाथ मिली थी?
3: तब गन हाथ मिली थी, यस यस।
4: वो कैसी फीलिंग थी?
3: इट वॉज गुड। गन्स किसको पसंद नहीं आती है, मतलब कुछ अलग फीलिंग होती है आपको। जैसे हम जो मेले में हम शूट करते हैं, गुब्बारे जो शूट करते हैं, तो आई गेस वहां से तो स्टार्ट होता ही है सबका, लेकिन वो स्कूल में वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार चलाए थे तो एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा था, तो आई गेस यस यस, बट वो काफी एक अच्छा, कुछ डिफरेंट करने का जो एक है वो, क्योंकि हमेशा बंदूक हम देखते हैं कि यू नो आर्मी मिलिट्री एंड मूवीज में देखते थे,
4: बिल्कुल,
3: बट खुद हमें करने मिलता है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट फीलिंग।
4: और किस तरह से फिर शूटिंग की दुनिया में आपके कदम स्कूल के समय में आगे बढ़ते चले गए?
3: तो स्कूल में जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्कूल में आफ्टर स्कूल आवर्स शाम को प्रैक्टिस करते थे हम लोग, तब इतना कंपटीशन का ये नहीं था। सो ये मैं 98-99 की बात कर रही हूँ, तो इतना कंपटीशन का एक्सपोजर नहीं था तब, तो हमने स्कूल लेवल पे खेले काफी स्कूल गेम्स वगैरह। तो उसके बाद स्कूल का जो जर्नी था वो, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, ये कुछ अलग है और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो आपको खुद के बारे में काफी जानने को मिलता है। तो आई थिंक वहां से जो स्टार्ट हुआ, फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी, तो वहां पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी। तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी
4: जी।
3: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी।
4: ये जो कॉलेज के जमाने से शूटिंग करना और उसके बाद नेशनल तक चले जाना, ये सफर कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि स्कूल और कॉलेज अलग दुनिया होती है, और नेशनल तक चले जाना, उसके बीच का सफर जो है उसमें काफी जद्दोजहद रही होगी।
3: सो मुंबई में रेंजेस इतने नहीं थे जो शूटिंग रेंजेस है। एक जो रेंज है जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है, जो वर्ली में है, तो वो एक रेंज है जहां पे शूटिंग की जाती थी, और एक चेतना कॉलेज करके है बांद्रा में, वहां पे एक ये था। तो 2-3 जगह जहां पे थी वहीं पे ये स्पोर्ट खेला जाता था, और हमारे स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था, क्योंकि जो चेतना कॉलेज में जो कोचिंग कर रहे थे वो यहाँ पे भी आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल में देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग करा जा सकता है क्या। तो आई गेस वो जर्नी जो थी स्कूल तो हमारा घर से 5 मिनट ही था, तो वहां पे तो आसान था, लेकिन स्कूल से हम जब कहीं और दादर में जब रुइया कॉलेज जाना पड़ा, तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेज मैनेज करना वो, और फिर भी अपना स्पोर्ट खेलना, आई गेस मुंबई में अगर आप दहिसर में रह रहे हो और आपको दादर जाना है, तो तब 1 आवर का जो ट्रैवल था ट्रेन में, सो मॉर्निंग हम 6 o'clock को निकलते थे, 7 o'clock के लेक्चर्स अटेंड करके, फिर दोपहर में शूटिंग का ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके, हम 9:30 को मैं घर आती थी
4: रात को।
3: यस रात को।
4: अरे बाप रे, ये तो बहुत 15-16 घंटे का।
3: यस यस, तो वो तो जर्नी वैसी ही

0: ट्रैवल और जो भी ट्रेनिंग, और तो वो एक प्रकार का, और वो एनर्जी ही अलग थी, डिसिप्लिन ही अलग था, क्योंकि सब आपके साथ, बहुत सारे आपके साथ आपके कलीग्स जो थे वो भी करते थे, तो वो फन था शूटिंग तब, स्पोर्ट ये फन था। और वैसे ही शुरुआत हुई कॉलेज के, और उसी में फिर नेशनल के लिए हम क्वालिफाई कर दिए।
1: जी, मेडल्स मिलने की शुरुआत कहां से हुई थी?
0: मेडल्स मुझे यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप से स्टार्ट हुए थे, जहां पे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने 400 में से 397 शूट किया था। आई
1: गजब।
0: थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, तो वो तब किसी ने शूट नहीं किया था। एंड उसी के साथ स्टेट मेडल्स एंड फिर नेशनल्स में, फिर मैं नेशनल्स में मेडल्स मिलना शुरू हो गया था। तो वैसे ही थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के स्टेट, नेशनल्स, यूनिवर्सिटी, ऐसी शुरुआत हो गई थी।
1: क्या बात है। अच्छा, एक अच्छे कोच की क्या भूमिका होती है और आपकी जिंदगी में वो कोच कौन और कब आए?
0: कोच की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड वो मुझे कोच बनने के बाद ज्यादा रियलाइज हुआ
1: बिल्कुल।
0: कि कितना इम्पैक्ट एक कोच का होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे कोच ने, मिस्टर संजय चक्रवर्ती, जो अंजलि भागवत, गगन नारंग और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, उनके कोच रह चुके थे। सो आई थिंक उन्होंने बहुत ही एक परसिस्टेंस जो होता है, डिसिप्लिन तो आई गेस हर
1: स्पोर्ट की
0: एक
1: जरूरत
0: स्पोर्ट
1: है।
0: की जरूरत है, हर एक लाइफ की जरूरत है, तो आई गेस वो तो उन्होंने सिखाया। लेकिन कंपटीशन को किस तरह आपको देखना है, एंड सिंस हमारा स्पोर्ट एक मेंटल स्पोर्ट है,
1: बिल्कुल।
0: तो उसकी जो तैयारी करनी है वो उन्होंने, उनका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत रहा है।
1: शूटिंग जो है वो, जैसे कि आपने कहा, एक मेंटल गेम है, तो धीरज, फोकस, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है? उसका रूटीन क्या होता है? जब आप खुद शूट करती थी तो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती थी?
0: जब मैं शूट कर रही थी, इतना एक्सपोजर नहीं था इन बहुत सारी चीजों का, तो हमारे लिए तो कोच ने कहा इतना आपको करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, या ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, सो दैट वाज, एंड यही आपका काम है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं पार्टी पे नहीं जाना है, कोई बर्थडे पे नहीं जाना है। आई गेस वो बहुत पहले मैं स्कूल और कॉलेज से ही मुझे वो समझ में आ गया था कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये हमारे कोच ने हमें बहुत पहले बता दिया था। एंड मुझे लग रहा है वही कंसंट्रेशन बना और वही चीज रिपीट कि दिन में इतने बजे उठना है, ये आपका रूटीन है, ये करना है, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर वही चीज आपको रूटीन में अगले दिन वही करना है। सो आई गेस वो चीज हमें, वो बताई गई थी हमारे कोच ने और वही हम करते गए।
1: बिल्कुल।
0: बट आज अगर आप मुझे पूछते हैं कि फोकस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या कंसंट्रेशन, तो हमारे यहाँ अभी काफी स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत इंक्लूजन हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो आपको बताते हैं कि स्पोर्ट को कैसे हैंडल करना है,
1: मेंटल तैयारी क्या है?
0: मेंटल तैयारी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, जल्दी सोना है। हम तो पहले, मतलब हम थक जाते थे और सो जाते थे, तो इतना एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फोन का, तो कंसंट्रेशन अपने आप, वो 3 घंटे में अपने आप हम फोकस हो जाते थे।
1: बिल्कुल। अच्छा, बतौर शूटर जो आपका करियर था वो किस तरह चला और वो कौन से हालात थे जिन्होंने आपको कोच बना दिया?
0: सो आई गेस एज अ शूटर, तो सबसे पहला तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एक स्पोर्ट के दौर पे, एक यू नो फिजिकल स्पोर्ट है, तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है, तो वो ही एक गोल था। उसके बाद जब 2-4 साल के बाद जब मेडल्स मिलने लगे, देन आप थोड़े से ड्रीम करने लगते हैं कि ओके अभी इसके बाद क्या है, तो आप आपके आजू बाजू में जो इंस्पिरेशन है आप देखते हैं, तो आई गेस वो देख के तो सबसे पहला मेन कि ओलंपिक्स में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है, तो वो गोल कॉलेज के टाइम हमने काफी वो सोचने लगे थे हम उस बारे में। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि शूटर के बाद मैंने कभी एज अ शूटर सोचा था कि मैं कोच बनूंगी.
1: अच्छा.
0: आइडियली मैंने रुइया कॉलेज से मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स किया था एंड देन फिर मैंने एमबीए किया था.
1: एमबीए करने की क्या वजह? Yes.
0: नहीं, एक साइड में बैकअप प्लान, बिकॉज स्पोर्ट के साथ एक
1: एजुकेशन
0: बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन ने. मुझे ऐसा लगता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट को आपको बहुत जरूरी है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बैलेंस देता है आपको. तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्पोर्ट करूंगी करूंगी, लेकिन मैं एजुकेशन को बैलेंस रखूंगी. तो आई गेस जब 2013 के अराउंड काफी मैंने आई थिंक 12-15 साल शूटिंग करने के बाद आई वॉज नॉट सो हैप्पी विद द वे शूटिंग हो रहा था. तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि शूटिंग जो स्पोर्ट है हमारा वो उसका कोई एज लिमिट नहीं है. तो आपको मतलब आप 50-60 तक आप शूटिंग कर सकते हैं. तो उसका सिंस एज लिमिट नहीं है तो आप उसको छोड़ने का मौका आता नहीं है आप में, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में तो आप इंजर्ड होते हैं.
1: Yes.
0: या यू नो
1: कोई लिमिट आती है.
0: लिमिट आती है तो शूटिंग स्पोर्ट में वो लिमिट नहीं है. तो जब 2013 में मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये बैकअप तो है हमारे पास, तो लेट्स आप शूटिंग की जगह थोड़ा सा कॉर्पोरेट में देखते हैं कि क्या है. तो मैंने 5-6 मंथ्स में एक एचआर के ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी वहां पे, बिकॉज इतनी पूरी जिंदगी आपकी स्पोर्ट में गई, आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर करियर और लाइफ के जब स्पोर्ट में जाते हैं तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं अचानक एक ऑफिस में कंस्ट्रेंट होके. फिर 2014 में एक जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने एकेडमी कुछ 15 साल पहले ओपन की थी अराउंड 2011-12 में. और हमने गुजरात में ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम शुरू करना था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पहुंचा, क्योंकि हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए. तो मैंने फिर बोला कि ठीक है, मैं देख के बताती हूँ कि कोई कोच होगा जो वहां पे इंटरेस्ट रखेगा जाने के लिए. तो ऐसा तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने घर पे बात किया, मतलब कि क्या मैं जा सकती हूँ क्या गुजरात और एक्सप्लोर कर सकती हूँ ये क्या है. तो जॉब अच्छी थी मेरी, आई वॉज डूइंग गुड. घर वालों ने मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा मुझे कि देखो, तुमने इतने साल तुम्हारा पैशन खुद एक्सपीरियंस किया है, तुमको जाना है, तुम देखो जाके. तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक स्कूल संस्कार धाम है, वहां पे हमारा ये टैलेंट एंड प्रोग्राम था गन फॉर ग्लोरी का. तो हम वहां पे गए वो स्कूल में, तो वो वहां के गुजरात के गांव-गांव से बच्चे आए थे काफी 12-13 साल के. तो वो ऐसे वो एक प्रोग्राम एक था गवर्नमेंट का, तो वो प्रोग्राम हम एक्सप्लोर कर रहे थे और वहां से हम टैलेंट लेके हम ट्रेन करने. तो मुझे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी. तो वैसे कोचिंग का जर्नी मेरा शुरू हुआ.
1: गजब. और आज ये स्थिति है कि बहुत स्टार खिलाड़ी जो हैं वो आपकी निगरानी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और इस वक्त आपके साथ सीख रहे हैं.
0: सो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इल वालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं.
1: वो गुजरात में ही मिली आपको?
0: यस. जो प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वो वहां पे उस प्रोग्राम के अंडर आए थे.
1: किसी गांव से आई थी?
0: नहीं, वो शी वॉज फ्रॉम सिटी, वो गुजरात से ही थे. तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे, उनको वो जोड़ के हम वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे. तो वो टैलेंट सर्च से वो आए थे, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई एंड आज भी हम साथ में हैं. शी इज एन अर्जुन अवार्डी वर्ल्ड नंबर 1. सो आई गेस वहां से उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी जर्नी की भी. और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सो आई गेस वो 2 एथलीट्स ऐसे थे जहां से उनकी मतलब शुरुआत हुई थी. धनुष है तेलंगाना से, हैदराबाद से है. तो बट कि सारे हमारे गन फॉर ग्लोरी एकेडमी का हिस्सा है, आज भी है. और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8, तो वो भी हमारे साथ है, हमारी एथलीट है. तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिला.
1: ये जो आपके प्रिय दो टॉप एथलीट हैं, इनको आप कितने साल से सिखा रही हैं?

0: 11 को मैं सिखा रही हूँ पास्ट मोर देन 12 इयर्स से, और धनुष को भी 10 साल से वो मेरे साथ में है,
1: जी
0: और काफी दूसरे एथलीट्स भी जो है वो भी आज 8 8 10 10 साल से साथ में है।
1: तो आपका ये जो तकरीबन एक डेकेड से ज्यादा का कोचिंग का ये सफर है, जाहिर है पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी कोचिंग करने की, कोच बनने की, ये सेल्फ लर्न मामला रहा है सारा, आपने खुद को ऑर्गेनिकली डेवलप किया बतौर एक कोच?
0: सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, जैसे गगन नारंग जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने काफी कोचेस को देखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में देखा हुआ था। मैं खुद मैंने काफी कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो बहुत लोगों के स्टाइल्स हमें पता थे, तो वैसे वो जर्नी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत बड़ा मौका मुझे 2017 में हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया कोचिंग का, क्योंकि इतना कोचेस को सिखाने का इंडिया में आई थिंक बहुत सारे कम कोर्सेस थे, बट कोचिंग कैसे करते हैं वो कोर्सेस नहीं थे। तो 2017 में हमारी एकेडमी ने एक प्रोजेक्ट लीप करके एक प्रोग्राम था, और उसके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके जो है उन्होंने कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया था। तो उस कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम के अंडर शूटिंग और बैडमिंटन थे, और कोचिंग कैसे करते हैं, आपको कोचिंग एथलीट को कैसे करनी है, वो कोर्सेस शुरू हो गए थे। वो उस पर्टिकुलर जो कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम का मेरे पे बहुत बहुत मुझ पर इम्पैक्ट रहा है, और उसमें लाइफ लेसन्स कोच ने कैसे एथलीट को बनाना है वहां से शुरुआत हुई।
1: अच्छा, जिस जमाने में आप खेलती थीं तब टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, आज हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ गया है, तो कितना हेल्प करती है आज टेक्नोलॉजी बतौर कोच आप जब सिखाती हैं शूटर्स को?
0: सो टेक्नोलॉजी हमारे इसमें टेक्निक, ये किसी भी एथलीट को, टॉप एथलीट शायद बिकॉज वो बाहर खेलने जाते थे तो वो एक दूसरे को देख के बाहर के कंट्रीज में देख के सीख लेते थे, तो वही टेक्निक्स जो आती थी वो इंडिया में वो लेके आते थे, और हम पे हम शेयर नॉलेज शेयरिंग जो बोलते हैं वो शेयर किया जाता था। तो टेक्नोलॉजी एज सच तो कुछ भी नहीं था। अभी जो फास्ट फॉरवर्ड, आप 10 15 साल फास्ट फॉरवर्ड मैं बोल सकती हूँ कि काफी इक्विपमेंट ओरिएंटेड हमारा गेम हो चुका है। सो काफी एप्लीकेशंस और काफी टेक्निकल चीजें आई हुई है, टूल्स आए हुए हैं जो आप को मॉनिटर कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत पूरी दुनिया में शूटिंग के मामले में कहां पड़ता है और क्या भविष्य है हमारा?
0: भारत आई थिंक आप अगर देखोगे तो शूटिंग के जो ओलंपिक मेडल्स है वो बहुत ही ज्यादा है। आज हम 2004 से देख रहे हैं तो ओलंपिक मेडल्स में हमने बहुत ही
1: लगातार आ रहे हैं,
0: लगातार मेडल्स है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में,
1: वर्ल्ड
0: हम
1: चैंपियनशिप।
0: वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है। तो आई गेस शूटिंग इज नंबर वन स्पोर्ट राइट नाउ इन इंडिया, और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो एथलीट्स बहुत जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, उन्होंने अपने अपने एकेडमीज ओपन किए, और उतना गाइडेंस बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है। सो आई गेस शूटिंग इज वन ऑफ द नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया।
1: आपके स्कूल में एक छोटी सी शूटिंग रेंज शुरू होती है और आप जुड़ जाती हैं, गुजरात में एक ग्रास रूट प्रोग्राम होता है और आपको कुछ ऐसे एथलीट मिलते हैं जो आगे चल के नाम कमाते हैं, ये जो ग्रास रूट प्रोग्राम्स होते हैं ये कितना मायने रखते हैं और आज देश के कोने कोने में शूटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए आप लोग क्या करें?
0: बहुत काफी स्कूल्स में ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एटलीस्ट मैं एक एकेडमी के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ कि काफी हमारे 20 एकेडमीज है आज, 20 ब्रांचेस है पूरे कंट्री में जहाँ पे हमारे ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स बनते हैं, और वहाँ पे हमारी टीम जो है वो सर्च करती है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज करती है टू सी कि शूटिंग स्पोर्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट, एक कोई रॉ स्टूडेंट है
1: उसमें
0: जो
1: संभावनाएं कितनी हैं।
0: संभावना है कि जो टैलेंटेड है, और
1: जी
0: कुछ हमने काफी साइंटिफिक मेथड्स फिगर आउट किए हैं जो एक शूटिंग एथलीट, मतलब जो शूटर है वो बनने के लिए चाहिए कुछ स्किल्स है, तो वो स्किल्स हम ढूंढते हैं काफी स्कूल्स में, भुवनेश्वर है, पुणे है, आज गुजरात का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जबलपुर है, चेन्नई है, ये काफी

0: सारे जगहों पे हमने ये टैलेंट सर्च किए हुए हैं, और आज बहुत जगह पे जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, सो दैट इज ऑल्सो एक ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम ही है, जहाँ से कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और अपना सेंटर्स में हमारे वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एज अ एथलीट डेवलप होता है।
1: अच्छा, जब आप शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, फुर्सत के पल होते हैं, तो वो क्या करते हुए बीतते हैं?
0: कोचिंग नहीं करती हूँ क्योंकि पूरा दिन हम कोचिंग करते हैं, जब नहीं करती हूँ तभी भी नेक्स्ट डे के बारे में सोचती हूँ, तो काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन चलता रहता है कि ओके ये आज ये नेक्स्ट डे ये एथलीट करना है। लेकिन मैं आई लाइक रीडिंग, रीडिंग बहुत अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो आई गेस ये बहुत सारी दो तीन चीज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ।
1: एक कोच के तौर पर ये जो उतार चढ़ाव हैं खिलाड़ियों के जीवन के, उनकी प्रोग्रेस के, कई बार नाकामी होती है, कई बार बड़ी कामयाबियां होती हैं, कई बार एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है। खुद को और खिलाड़ियों को संभालना कितना मुश्किल होता है?
0: ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं और आप सारे एथलीट्स हर बार आप मेडल नहीं जीत सकते हैं, या हर बार आप वही सेम ऊंचाइयां नहीं आप देख सकते हैं। तो हमारी बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं एक एथलीट के, कोच तो एक बोलते हैं कैप्टन है, लेकिन वो शिप को बनाने में बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है। तो हम ये टीम आई गेस एक अच्छा एनवायरनमेंट एथलीट को देते हैं और हम संभाल लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम संभाल लेते हैं उस एथलीट को, उसकी जो जो जरूरत है वो टाइम पे वो उसको देखना, उसको समझना एंड फिर उसको वो काइंड ऑफ सपोर्ट देना। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो आप मुश्किल नहीं है इतना।
1: आपके सिखाए हुए बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला है, कितना गर्व होता है?
0: बहुत ही इट्स प्राइड, रिकग्निशन इम्पॉर्टेंट है उनके काम के लिए, इन स्पोर्ट्स काफी जरूरी होता है क्योंकि मेडल्स तो है ही, लेकिन अवार्ड्स ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है एंड लेकिन एक नेशनल अवार्ड मिलना एथलीट को, और वो भी सबके सामने रिकग्नाइज होना पूरे, बिकॉज आप वो मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो
1: बिल्कुल।
0: मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्राइड।
1: अच्छा, एक और बड़ा मकाम आपकी अपनी जर्नी में आया है, जब अभी अभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, अभी अवार्ड मिलना बाकी है। ये खबर जब आपको मिली तो क्या फीलिंग थी, क्या कैफियत थी?
0: फीलिंग तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जितना काम हम करते हैं और इतने साल से जो काम किया है एंड उसका जब एक रिकग्निशन आपके एथलीट्स बनाने का आपको मिल रहा है, आई गेस एक अच्छा फीलिंग है, बहुत ही हम्बल फीलिंग है और ऑनर फील होता है कि आपको रिकग्नाइज किया गया है, सो आई गेस इट्स अन गुड फीलिंग।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड अब और कितनी दूर हैं? आने वाले सालों में किन किन मुकाबलों में अवार्ड्स की उम्मीद है?
0: सो अभी एशियन गेम्स है, सितंबर से एशियन गेम्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो 4 साल में एक बार आता है एंड इट इज मच लुक्ड आफ्टर, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है और एशिया के टॉप, एशिया की जो कंट्रीज है और उनके टॉप एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है एशियन गेम्स। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है, उसका जो कोटा इवेंट होता है वहां से शुरुआत होगी,
1: बिल्कुल
0: सो काफी दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और विविध भारती के स्टूडियो में आ पाई और अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले अपनी पसंद का एक गाना जरूर बताइए जो हम अपने श्रोताओं को डेडिकेट करेंगे।
0: वैसे तो बहुत गाने हैं, लेकिन एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जो है वो है जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: क्या बात है, जुर्म फिल्म का ये गाना सुनते हैं। आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: शुक्रिया।

0: मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन।

0: सच है क्या।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि। उन्हें याद करते हुए आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उनके संगीतबद्ध किए कुछ गीत शामिल किए हैं। अगला गीत मधुमति फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि और हम उन्हें याद कर रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद से मन्नाडी की आवाज में, योगेश का लिखा गीत, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

बस इतना सा ख्वाब है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाजों में। गोल्डी बहल और श्यामराज का लिखा गीत था और आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया। ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें याद करते हुए आपको उन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में उलझन फिल्म का गीत, मदन पाल ने इसे लिखा है, आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवा रहे हैं आदि श्रीवास्तव का ही संगीतबद्ध किया गीत। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, जगजीत सिंह और अलका याग्निक ने गाया है। फिल्म का नाम तरकीब।

0: सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत। अभिजीत और साथियों ने इसे गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है आदि श्रीवास्तव ने।

0: अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाजों में ये अगला गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से, समीर के बोल आदेश श्रीवास्तव का संगीत।
1: शुरू हो जाओ। 1 2 1

कैलाश खैर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में देव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली के बोल, आदि श्रीवास्तव की बनाई धुन।

देव फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न होने जा रहा है। आज हमने आपको संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत सुनाए, साथ ही संगीतकार आदि श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर भी हमने उनके संगीतबद्ध गीत आज यादों की महफिल कार्यक्रम में शामिल किए थे। ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

पति ने आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और डिजिटल नवाचार को लेकर आज जयपुर में राजस्थान हेल्थ केयर समिट आयोजित की जा रही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रही इस समिट का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से किया जा रहा है। समिट में स्मार्ट और कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम पर चर्चा की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधा में आ रही चुनौतियों पर समिट में चर्चा होगी। समिट में जो भी सुझाव प्राप्त होंगे वे राज्य सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे। जयपुर जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट पीजी 2026 परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। इसमें 2499 परीक्षार्थी भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रही यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा के दौरान जयपुर के IoN डिजिटल जोन, IDZ सीतापुर स्थित 2 परीक्षा केंद्रों में बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण बाधा आई थी। इन केंद्रों पर परीक्षा पूरी नहीं कर पाए अभ्यर्थियों के लिए इस पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गिद्धों के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि गिद्ध प्रकृति की अपनी क्लीनअप टीम है। वे इकोसिस्टम को साफ रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से गिद्धों की सुरक्षा, उनके आवासों को बहाल करने और इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्य में सक्रिय मानसून के असर से कई क्षेत्रों में लगातार बरसात हो रही है। प्रदेश में भादो में सावन सी झड़ी लगी हुई है। सवाई माधोपुर में 2 दिन से चल रहा बरसात का दौर आज भी बना हुआ है। वहां रुक रुक कर कभी तेज

0: की है। भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है कोई मिल गया फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, और स्वर है इब्राहिम अश्क की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत है कभी खुशी कभी गम फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे अनिल पांडे ने और संगीत दिया संदेश शांडिल्य ने।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: समय दोपहर के 1:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं का दैनिक कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को योगिता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों कहते हैं ना, अंधेरे रास्तों में दीप जलाया, गिरते कदमों को चलना सिखाया, किताबों से आगे जीवन पढ़ाया, हर मुश्किल में हौसला बढ़ाया। गलती हुई तो डांट भी मिली, और जब हम सफल हुए तो मुस्कान खिली। शिक्षक का रिश्ता कितना प्यारा, इनसे ही तो है जीवन हमारा। कलम पकड़कर हाथ को थाम लिया, सपनों को एक नया नाम दिया। गुरु का ऋण हम कैसे चुकाएंगे, बस उनके दिखाए हुए रास्तों पे हम चलते जाएंगे। तो सखिया, हमारी समझ ही गई होगी कि इस कविता को आज जो मैं आपको बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है। जी हाँ सखियों, आज है 5 सितंबर और आज का दिन समर्पित है उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने जीवन में हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का रास्ता दिखाया, जीवन पे चलना सिखाया। आज शिक्षक दिवस पे और बहुत सारी बातें करेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है और गुरु का महत्व तो जीवन में कितना है। उसके लिए तो कहते हैं कि शब्द ही कम पड़ जाएंगे, पर हम गुरु के महत्व को नहीं बता पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि गुरु के महत्व को हम थोड़ा बहुत समझा सके और भी खूब सारी बातें कर सके, पर उससे पहले समय है थोड़े से मनोरंजन का। तो हम सुनते हैं उससे पहले एक प्यारा सा गीत।

तो गीत से पता चलता है ना कि जो छोटा बच्चा होता है उसके हम बचपन से अगर दिमाग में डाल दें कि आप क्या हो, आप इस देश का भविष्य हो और आप छोटे हो पर आगे चलकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो और बहुत कुछ देश के लिए कर सकते हो। बस बच्चों को कभी कभी क्या आता है कि उनको जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप छोटे नहीं हो, आप स्पेशल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जो वो छोटा छोटा जो आत्मविश्वास हम बचपन से बच्चों में डालते हैं ना, तो वो आगे बहुत काम देता है। अब बात करते हैं हम कि आज के दिन ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस को हर साल 5 सितंबर को मनाए जाने के पीछे ये वजह है कि इस ये दिन भारत के महान दार्शनिक शिक्षक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे इंसान का निर्माण करना है जो सोच सके, समझ सके और समाज के लिए उपयोगी बन सके। और पता है जब उनके जो विद्यार्थी थे तो उनकी मन में इच्छा हुई कि सर हम आपका जन्मदिन मनाएं, तो उन्होंने कहा कि यदि आप इस दिन को अगर बनाना चाहते हैं तो इस दिन को आप शिक्षकों के सम्मान के रूप में बनाया जाए तो मुझे उनको बहुत खुशी होगी। तभी से इस चीज की शुरुआत हुई और 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये बात ये है कि शिक्षक दिवस की बात हो गई और अब हम बात करें शिक्षक की। शिक्षक कई तरह के होते हैं। कहा पहले तो बोलते हैं कि शिक्षक का जो हम पहला रूप देखें तो सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं जो बच और परिवार होता है जो बचपन में बहुत छोटे से हम लोगों को सही गलत की समझ समझाना शुरू कर देते हैं। फिर जब स्कूल जाते हैं वहाँ हमें भांति भांति के शिक्षक मिलते हैं जो जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हिंदी की टीचर है जो छोटेपन में हमें कविताएं सुनाती है, चीज़ों को समझना सिखाती है, वहीं मैथ्स के सर कठिन कठिन सवालों से हमें लड़ना सिखाते हैं। जो स्पोर्ट्स के सर होते हैं वो हमें बताते हैं कि रुकना नहीं, गिरोगे फिर उठोगे फिर आगे चलोगे। तो शिक्षक का कोई एक रूप नहीं है, शिक्षक के अनेक रूप है। शिक्षक हमारी और शिक्षक ऐसा होते हैं कि ये नहीं कि स्कूल ख़त्म और कॉलेज ख़त्म तो हमारे शिक्षक अब हमें कहाँ मिलेंगे, बाकी ये होता है जीवन के पथ पथ पर हमें किसी ना किसी रूप में शिक्षक मिलते हैं और हमें जिंदगी की जीने की सही प्रेरणा देते हैं। बहुत सी जगह हम अटक जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ सलाह की जरूरत है, हमें कोई रास्ता दिखाए, तो कई बार हमें कोई शिक्षक के रूप में हमें रास्ता दिखाता है। और कई बार बचपन की कुछ बातें जिनको हमको पता ही नहीं था कि वो हमें इतना काम देगी, उनको सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और भी बातें करेंगे शिक्षक दिवस पर उससे पहले हम सुनते हैं एक और गीत।

कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और आपके साथ है आपकी सखी योगिता। सखियों, हम बात कर रहे थे उन रिश्तों की, उन गुरुओं की जो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर एक दिन, एक बार या फिर समय के साथ वो हमारी जिंदगी से चुपचाप चले जाते हैं, फिर भी हमेशा हमारी यादों में वो एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और एक ऐसा ही रिश्ता जो हम बात कर रहे हैं, गुरु और शिष्य का, क्योंकि जब आप याद करेंगे अपने पहले की बात, अपनी स्कूल की, कॉलेज की, तो बहुत सारे शिक्षक हमारी जिंदगी में आए, बहुत सी प्रेरणा दी, बहुत सी बातें करी जो शायद हमें उस वक्त इतनी याद ना हो, पर जब हम पीछे पड़ रहे के देखते हैं ना, तो वो बातें हमें याद आती है। कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम छोटे होते थे तो शिक्षक की जब डांट पड़ती थी ना, तो उस टाइम बहुत बुरा लगता था, लेकिन सालों बाद समझ में आता है कि उस डांट के पीछे कितनी चिंता और कितना अपनापन था। कभी परीक्षा में जब हमारे नंबर कम आ जाते थे तो एक ही सवाल, एक ही बात गुरु के द्वारा कही जाती थी कि तुम कर सकते हो, बस थोड़ी मेहनत और करो। बस वो उनका वो शब्द हमारे अंदर इतना जोश भर देता था कि हमारे सर या टीचर जो भी कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। और बच्चों की बात कहें या हमारे बचपन की बात कहें, तो कोई भी हमें कोई चीज़ समझाए वो इतनी समझ में नहीं आती थी जितना हमारे टीचर्स हमें कहते थे। अगर उन्होंने कहा ये चीज़ सही है तो वो चीज़ सही है, चाहे उसके लिए हमें किसी से कह, जैसे एक एग्जाम्पल दे रही, पेरेंट्स कह रहे हैं ऐसा नहीं, नहीं नहीं मम्मा आप गलत कह रहे हो, मेरे सर ने कहा है या टीचर ने कहा है तो वो सही है। तो ऐसा जो शिक्षक होता है उनका हमारे दिल पे इस तरह से होता है कि ये बिल्कुल सही है। और शिक्षक ही हमारे भीतर की उस प्रतिभा को पहचानते हैं जिसे हम खुद कभी पहचान ही नहीं पाए। और कहा जाता है ना शिक्षक, कहा जाता है ना सखियों कि एक अच्छा शिक्षक उम्मीद जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है और सीखने का प्रेम पैदा कर सकता है। तो यही बात होती है कि शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में हमेशा रहता है। और आज जब हम शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं तो एक जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे सभी श्रोता, तो बात बचपन की थोड़ी सी याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए कि ऐसे कोई शिक्षक जिनको आप आज भी याद करते हैं, ऐसे वो शिक्षक जिन्होंने आपको पहली बार मंच पर बोलने का मौका दिया, ऐसे वो शिक्षक जिन्होंने आपकी लिखावट सुधारी और आपने अच्छा काम किया तो उन्होंने आपको बहुत ही प्रोत्साहित किया, या फिर कहे कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने जिंदगी के किसी मुश्किल दौर में आपका हौसला बढ़ाया हो। तो आज जब आप सोचेंगे ऐसे शिक्षक के बारे में, ऐसी अपनी पुरानी यादों के बारे में, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी और पता चलेगा कि जो शिक्षक का सबसे खूबसूरत जो आपको उपहार दिया वो भी आज आपके पास है एक अच्छी याद में। भले ही आज शिक्षा का तरीका बदल गया हो, क्लासरूम में भले आज स्मार्ट बोर्ड आ गए हों, किताबों के संग डिजिटल स्क्रीन आ गई हो और जानकारी पाने के लिए इंटरनेट तो हमारे हाथ में ही है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत। क्योंकि जानकारी इंटरनेट दे सकता है लेकिन उस जानकारी का सही उपयोग लेना भी एक बात होती है कि हम उसका उपयोग किस तरह से लें, वो जानकारी हमें सिर्फ एक अच्छा शिक्षक ही सिखा सकते हैं। तो इस खूबसूरत विचार के साथ सखियों हम आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ जो हमें मनोरंजन के साथ में गुरु के महत्व को भी समझाएगा।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

शिक्षा की बात हो और महिलाओं की बात नहीं हो तो फिर बातें फिर अधूरी रह जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक महिला शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित नहीं होता, बल्कि दो परिवार शिक्षित होते हैं और धीरे धीरे पूरा समाज भी। हमारे इतिहास को ही देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने उस वक्त शिक्षा की अलख जगाई थी जब लड़कियों के पढ़ाना सख्त खिलाफ माना जाता था। उन्होंने सामाजिक सोच को चुनौती दी और लड़कियों के लिए आगे का रास्ता तय किया। तभी तो आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है। हर चीज एकदम से शुरू नहीं होती, उस चीज के लिए एक नींव रखी जाती है, और जब वो नींव जितनी मजबूत होती है ना, तो उतनी ही अच्छी इमारत बनके तैयार होती है। कहने का मतलब कि आज से कोई भी चीज शुरू नहीं हुई, हमारी बहुत सी महिलाओं ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उससे सब चीजें इतनी सुदृढ़ बन रही है। आज हम स्कूलों में देखो चाहे कॉलेजों में देखो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां महिलाओं की महिलाएं ना हो। हर जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और आज शिक्षक दिवस पर उन महिलाओं को और शिक्षिकाओं को भी नमन है जिन्होंने न जाने कितनी बेटियों की और कितनी बहनों की जिंदगी की दिशा को बदला है। कभी कभी एक शिक्षक की कही भी छोटी सी बात जिंदगी भर की प्रेरणा बन जाती है। तो आज उन सभी महिला शिक्षिकाओं को भी हमारा शत शत नमन है जिन्होंने ज्ञान का दीप जलाया, अंधविश्वास के अंधेरे को दूर किया और शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया। तो सखियों, बातें तो बहुत सारी और करने का मन है और ऐसा लगता है आपसे बातें करते ही रहे, पर जो ये समय है ना, ये मुझे रोक रहा है। अब मेरे को समय हो रहा है आपसे आज्ञा लेने का। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही सुनते रहिए। आप आज्ञा दीजिए योगिता व्यास को। करती हूँ नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है और अब से थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगे मिड डे न्यूज़। ये दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी। उसके बाद 2:15 पर दिल्ली से प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज़। The headlines. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports and outdoor activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in China Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Awards Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The President said that a society that respects teachers is a progressive society in right terms.
2: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
1: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country, highlighting the importance.

कक्षा की चार दीवारों के भीतर बोला गया शिक्षक का एक वाक्य कई बार विद्यार्थी के पूरे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। उनकी आवाज में केवल शब्द नहीं होते, उनमें अनुभव की गहराई, स्नेह की उष्मा और भविष्य के सपनों की आहट होती है। आज तकनीक ने ज्ञान के अनगिनत द्वार खोल दिए हैं। एक क्लिक पर संसार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है, लेकिन ज्ञान को विवेक में और जानकारी को जीवन मूल्य में बदलने का काम शिक्षक ही करते हैं। वे हमें केवल ये नहीं सिखाते कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करना है, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि जीवन की कठिन परीक्षाओं में धैर्य, ईमानदारी और साहस के साथ कैसे खड़े रहना है। शिक्षक दिवस इसलिए केवल शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ उस दीप को प्रज्वलित करने का दिन है जिसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। ये दिन हमें उन गुरुओं को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने हमारी गलतियों को सुधार कर हमें बेहतर बनाया, हमारी असफलताओं में हमारा हाथ थामा और हमारी छोटी सी सफलता में भी सबसे बड़ी खुशी महसूस की।

शिक्षक ज्ञान की वो नदी है जिससे जीवन की प्यास बुझती है। शिक्षक वो आकाश है जहाँ सपनों को उड़ान मिलती है। शिक्षक वो प्रकाश है जिससे अज्ञान का अंधकार मिटता है। इसलिए शिक्षक के प्रति सच्चा सम्मान केवल उनके चरणों में सिर झुकाने से नहीं, बल्कि उनके दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारने में है। जब कोई विद्यार्थी ईमानदारी से आगे बढ़ता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, तब उसके शिक्षक की शिक्षा वास्तव में सार्थक होती है। शिक्षक हमारे जीवन के वे शिल्पकार हैं जो पत्थर में छिपी मूर्ति को पहचान लेते हैं। वे हमें तराशते हैं, सवारते हैं और ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जिस पर परिवार, समाज और राष्ट्र गर्व कर सके। शिक्षक दिवस पर हर शिक्षक को शत शत नमन, क्योंकि उन्होंने हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाया बल्कि जीवन की किताब को समझकर पढ़ना सिखाया। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
4: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
4: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों

0: जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है, इस प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
5: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
0: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र, विशेषकर दियारा क्षेत्रों में में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

आवाज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
5: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
4: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
5: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए ओए तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: तोरे भैया मेरी गली आते हो क्यों बार बार, छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार।
1: क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार।

0: गोरी अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आंखें सी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया

0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: हाफ टिकट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था सलिल चौधरी का।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
4: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में अगला गीत, शैलेंद्र के बोल, संगीतकार सलिल चौधरी, फिल्म का नाम 2 बीघा जमीन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, लाल बत्ती फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

बचे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बचे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये

इसमें सवार कोई कार का भिखारी, खाबों की दुल्हन साथ बिचारी। ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है आजादी।

चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। कहे जुगल गाओ प्यारो गम के मारो बेस।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: मन चाहे गीत,
3: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
3: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे तेलीपारा बिलासपुर से एक श्रोता हैं, रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। इन्होंने

हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर सी राखी बनाकर पत्र भेजा है। बहुत ही सुंदर पत्र है ये। इन शुभकामनाओं के साथ हमने ये पत्र यहाँ इस कार्यक्रम में आज आपको बताने के लिए शामिल कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह पत्र भेजने के लिए, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, आरजी बर्मन का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, कुदरत है फिल्म का नाम। और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं जिनकी ये फरमाइश है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही जम्मन रेकवार, मूलचंद्र रेकवार, मनसुख रेकवार, लालचंद्र रेकवार और सरमन रेकवार, ग्राम गड़िम लहरा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे इंदौर की एक श्रोता है सृष्टि उपाध्याय, ये गीत सुनना चाहते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

इस अली खान, मोहम्मद दानिश, शहनाज खान, समीर अहमद और सबा ये सुनना चाहते हैं लखनऊ से ये गीत।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरि अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुरोशे, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशे। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है और महेंद्र कपूर की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई गीताबा, धर्मराज करणराज सिसोदिया परिवार, और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छतरी तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथी सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करड़ा से रोड रिसोर्ट से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरबत देशमुख ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का, आशा भोसले की आवाज में।

जैन और पीआर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम साल्या खेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी, स्वप्निल और अजय, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने, ये गीत सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: जान चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे। आंख की किरकिरी, रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चांकित रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी।
2: हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
3: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
4: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की मां अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था।

0: माता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, मां की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
0: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
0: नहीं नहीं ये नहीं होगा, गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी, घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूं। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
0: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ मैं तो भूल ही गया था, बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को मां के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
0: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
2: अरे महेंद्र, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ वो तबीयत ठीक नहीं इसलिए बाहर नहीं जा सका, वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
0: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
1: नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
1: अच्छा
0: कुछ आराम मिल रहा है?
1: हाँ।
2: अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
0: हम मूर्ख स्त्रियां ऐसे क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
2: ठीक तो है, अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
2: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा, मैं ही सरदर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका, मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं, कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह यहां क्यों आई?
2: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी मां ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है, तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
1: अर्थात?
2: अर्थात मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं
1: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
2: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन तुम्हारा ये भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम्हीं से मान की भिक्षा मांगने आया है। अरे कुछ दे दे।
3: हम जाते हैं।
2: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल ली जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है।
1: बिहारी ये तू क्या पक रहा है?
2: ठीक है मैं चलता हूँ।
0: अरे रे रे रे, आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।
2: महिंदा तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
1: पहेली मत बुझाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
2: साफ ही कहूंगा महिंदा, विनोदनी तुम्हें जान बूझ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
1: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
2: ठीक है मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न भूलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया, इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो चुन्नी।
3: नहीं ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
2: चुन्नी मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
3: सुनो हमारी एक प्रार्थना है।
2: कहो।
3: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
2: और तुम भी?
3: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगी, दिखाना चाहती हैं कि मेरी परवाह नहीं करती। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही बाधा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? बच्चा ही जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहां जाएंगे? वो उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों का स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों, यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिखो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
3: दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो,
1: इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेधती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बह कर आई हूं, बहकर चली जाती।
3: ये चिट्ठी, समझा आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने ये चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए, और अब से मैं विनोदनी से दूरी रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
1: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
1: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी, लोग क्या कहेंगे।
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो। किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपने काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
3: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
0: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
3: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ।
4: क्या है बेटे?
3: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
2: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते।
3: मैं नहीं जा सकूंगा।
2: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा।
3: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
2: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
1: लाला जी, लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
2: ना ना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूं।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
5: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया। पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी। एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो। तुम्हारी विनोद भाभी।
3: विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद के मन की गति किस ओर है। तो क्या मैं विनोद से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा।
6: व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
0: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूं, चिट्ठी खुली हुई क्यों है?
5: समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का

0: बेटी देख रही हूं कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहां है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेलखाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: अच्छा बंधन स्वीकार किया है तो छाती कहाँ हो?
1: जी जी छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा, तू बेटी, महेंद्र तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
4: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
3: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: उनकी बात मुझसे न पूछो।
3: अरे बता तू, क्या बात है?
4: वो मैं न बता सकूंगी।
3: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी
5: चुन्नी बेटी, लाल टेन लेकर नीचे जा और दरवाजा खोल दे।
4: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
1: हाँ
6: भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
1: मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मौसी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए।
3: किसे चुन्नी, किसे?
1: वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मौसी।
3: अच्छा बिहारी,
5: बिहारी
3: बिहारी।
6: काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
3: क्या?
6: बस कुछ ना कहो, चलता हूं, प्रणाम।
4: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आज शाम यहां चले आए थे, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। थाउची के लौटने का भी कुछ नहीं, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
7: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
8: बॉम्बे टॉकीज,
9: साइंस, लाइट्स,
8: साउंड कैमरा एक्शन।
9: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
10: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
11: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बंबई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, अब पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
10: जी।
11: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
10: अब आगे क्या,
11: आगे क्या।
10: खुद को भी अभी तक ये पूरा
11: हाँ
10: स्वीकार नहीं हो रहा है मन को,
11: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता, इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो, अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या मतलब क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया, उनको ये पहले देख के वो बिल्कुल, हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे,
10: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
11: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट।
12: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
13: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
12: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
13: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
12: पर रेरा तो शहरों में।
13: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
12: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
14: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
11: लेकिन अब तो हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसके, मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके, क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
10: बिल्कुल, बिल्कुल।
11: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे और अकेले रहने नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे दो और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। पैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
10: और वो अच्छी रकम थी,
11: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
10: आंखें एकदम,
11: खेल तो वहां से पलट गया सर। हाँ। ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
10: बिल्कुल
11: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हर, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे यू नो पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप नहीं
10: थोड़े में खुश रहना,
11: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी। हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
10: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
11: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
10: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
11: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए। तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
10: बिल्कुल।
11: तो

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
1: हिस्सा
0: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: हाँ, तो ये गाना हमने सुना, गंगा मैया तो है पीले चढ़े वो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारेगामा
0: के प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ।
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो उस वक्त का जो दौर था।

0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर हैं, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साई बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं, भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को कि इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद। पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा तो भी हम ना नहीं बोलते,
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: बोल पाते
0: कैसे, संभाला फिर अपना गला उन दिनों में जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
1: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे, चस्का तो वहां से भी लग चुका था, और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
0: एक रूप है,
1: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही हमको लगता है कुछ है ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट।
0: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा,
1: करेक्ट,
0: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
0: ये अलग चैलेंज हो गया
1: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है।

0: आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक
0: संभल गया था पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था, वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छे कट, अच्छी मतलब मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था। और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे। माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो, क्लास जा रहे आ रहे। पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आ गई थी और उन्होंने गाना भी सुना। और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया
0: जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया या था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, फेवर्स कोई फ्री में
1: करण बनते हैं।
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके। और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के यहाँ आए हुए, हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने,
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह।

0: से 2012 तक।
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में।
0: एक्टिंग की दुनिया में एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है। तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
1: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
0: बिल्कुल।
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
0: हाँ टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई मेरे माँ बाप मेरी बहन कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता था।
1: आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है।
0: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
1: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
0: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
1: तो ये क्लासेस
0: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी तुम
1: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी
0: तो चलेगा। तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
1: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
0: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
1: ये सारे संस्कारों का खेल,
0: ये सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
1: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी?
0: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
0: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
1: FTII की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वॉज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी, मे बी यू नो, ये मेरे दिमाग में, ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स,
0: करेक्ट,
1: एंड टेल योर स्टोरी,
0: करेक्ट, टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज। क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है, इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा, तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट।
1: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई।
0: हाँ,
1: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
0: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता है।
1: नहीं, ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं।
1: हाँ
0: लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTI में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को। मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख लें
1: या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और शान बगा लें।
0: कुछ भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की सोच रही थी वो FTI में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया, यहां से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है,
1: करेक्ट,
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब
0: फाड़
1: सब
0: करती
1: सब
0: हुई,
1: सब
0: है ना,
1: सब सब
0: तो मतलब दीपाली
2: अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया।
3: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582240168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: चुका है अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये समझ आया सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये एफटीआई ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है,
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस,
1: देयर इज नो बाउंड्री, और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं,
0: बहुत सही,
1: नॉट जस्ट लिटरली फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया, ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है जो फिजिकली और नॉन फिजिकली मेंटली ऑल्सो हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये एफटीआई ने सिखाया हमको,
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे,
1: बिल्कुल, हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे, मतलब कोई इंजीनियर है इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा,
0: बिल्कुल,
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे, तो ये एक ऐसा बाउंड्री था जो फिजिकल बाउंड्री था एफटीआई का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे,
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग,
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स, और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था, ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को, और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा यू नो सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों को सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट हैं, ये जो मेरा एक साल का जर्नी था एफटीआई में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर, एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है,
0: वाह वाह वाह,
1: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है, सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन एफटीआई, तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
0: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
1: पूरा पूरा, मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, एफटीआई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत, दीपाली को अडल्ट बनाया FTII ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस. वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली.
0: अच्छा,
1: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है. यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और FTII के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए. और वो एक इतना कथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
0: हल्का
1: हुआ,
0: हो जाना.
1: इतना हल्का महसूस हुआ तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है. मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक.
0: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था. और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने.
0: यहाँ एक गाना सुन लें.
1: बिल्कुल.
0: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं.
1: बिल्कुल.
0: कौन सा गाना होगा?
1: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की भूल है।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI
0: तो यही करना है,
1: सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे।

0: कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो,
1: तो
0: ऐसा भी सुनने मिलता था।
1: एक एनोनिमिटी मिली।
0: एक अनोनिमिटी मिली और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं। अगले 1-2 साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है। और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर। आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
1: बहुत सही।
0: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि टारगेट ध्येय ये है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए या
1: हाँ
0: जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: वो पैशनेट लोग ही
1: अब
0: कर
1: एक
0: सकते हैं।
1: टीम की तरह काम करना
0: अब जो
1: जानते हैं।
0: इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए। अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने जीवन के, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और FTI का तो हम मशहूर हैं, बैचमेट्स और
1: बिल्कुल
0: अलुमनाई
1: बिल्कुल,
0: हमारा काफी तगड़ा है।
1: वहां एक तरह का कनेक्शन जो है
0: वो
1: जोरदार होता
0: बहुत
1: है।
0: जोरदार होता है, और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और 1 साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना
1: पृथ्वी
0: आजमी
1: में
0: जी और बाबा आजमी जी, ही दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर, जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है
0: पृथ्वी हाउस में, पर
1: जी।
0: पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम,
1: बिल्कुल
0: हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी
1: यस,
0: साहब रहते थे। तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल, और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर। एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई हैं वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTI से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है
1: यस
0: जिसके
1: यस
0: साथ
1: यस,
0: आप, वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना,
1: हाँ
0: गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
1: वाह वाह वाह,
0: ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: फिर से एक दो रहा गया
0: आगे बढ़ने से पहले
1: वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें होती हैं। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के युवाणी कार्यक्रम में मैं आपका रेडियो दोस्त और आज के इस कार्यक्रम का होस्ट सोम कविया लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम। साथियों, अज्ञान के तिमिर को हर कर ज्ञान का दीप जलाते हैं, सच्चे पथ का मार्ग दिखाकर जीवन सुघड़ बनाते हैं। कोरे कागज सी काया पर जो संस्कारों के रंग भरें, मूर्तिकार बन गढ़े जो माटी जन जन का उत्थान करें। अक्षर अक्षर जोड़ हमें जो जग से लड़ना सिखाते हैं, मोम सरीखे जल कर खुद भी पथ आलोकित कर जाते हैं। शीश झुके उन चरणों में जो निस्वार्थ भाव से ढाल बनते शिक्षक ही हैं इस दुनिया में, जो भावी कल के निर्माता बनते। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन काव्य पंक्तियों के साथ हमने हमारे सभी शिक्षकों को एक सम्मान शब्दांजलि भेंट की है। वैसे तो कहा जाता है साथियों कि शिक्षक ने हमें जो दिया है, हमारे गुरुजनों ने हमें जो दिया है, उसका एहसान और उसका हिसाब कभी किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि कहा गया ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों जगहों पे हमें सुघड़, मजबूत और लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करने वाले हमारे शिक्षक गण होते हैं। उन सभी को आज हम शिक्षक दिवस के दिन नमन करते हैं, याद करते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, और अब हम लिए चलते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फोन करें गीत सुने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें जो कॉल मिली है उनका नाम है अनूप सिंह राठौड़। आपने हमें अलाय से फोन किया है और आप सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी कपड़ा मकान का ये सुंदर सा नगमा, मैं ना भूलूंगा।

फ़ोन करेंगे गीत सुने कार्यक्रम की अगली पसंद है। डीडवाना फाटक नागौर से हमें कॉल किया है कोमल ने, और आप सुनना चाहते हैं फिल्म बंधन का ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फोन करें गीत सुनी कार्यक्रम में अगली पसंद। नयाज पेंटर की लोहार पुरा नागौर से आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फोन करेंगे गीत सुनेंगे अगली पसंद सीताराम सेन की नया दरवाजा नागौर से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत।

अगली पसंद अनवर हुसैन की, बी आर मिर्धा कॉलेज के पास से आपने फ़ोन किया है। आप सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत का ये नगमा।

तिगरी बाजार नागौर से हमें फ़ोन किया है मोहम्मद साहिल, मोहम्मद बिलाल और हबीब ख़ान ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म परदेस का ये गाना, ये दिल।

फोन करें, गीत सुने। इस सेगमेंट में अगली पसंद है कुंभाराम जी की। आपने शास्त्री नगर नागौर से हमें कॉल किया है। आप सुनना चाहते हैं राजा और रंक फिल्म का ये बेहतरीन नगमा, माँ तू कितनी अच्छी है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह सेगमेंट फोन करें गीत सुनिए संपन्न होता है, और इसी के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त सोम कविया को भी दें इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पणिहारी।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: मैंने देखो सब बड़े ऊना लो तो मैंने आज आप कठे भी जावा तो अपना सुनने मिल ही जावे, क्योंकि देखो उस समय ही शिक्षा रो है। और इस समय में भी देखो अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका या दूजा नहीं रू वंचित राख देवा तो इरू बड़ो शायद ही कोई नुकसान हो, क्योंकि देखो आज के समय में भी अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकिया तो आगे अपने जीवन ने अंधकार में डूबने कोई भी नहीं बचा सके, क्योंकि बिना देखो शिक्षा के प्रकाश में ही आप अपने जीवन की सच्ची खुशियां प्राप्त कर सका है। इस वास्ते देखो अपने स्वयं ने तो शिक्षा प्राप्त करने रो कोई अवसर नहीं छोड़ना, और इरे साथ साथ अपने घर री लुगाया और बेटियां ने भी आखिर ज्ञान जरूर दिलाना जीरो में पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन में देखो आगे बढ़े। पर मैंने देखो आप कई बार देखा हाँ कि घना ही परिवार आपकी घर री बालिका ने पढ़ावन का सत विरोधी हुए और बनी सोच हुए कि बेटी ने तो अगला घर जामनो है, इस वास्ते इन्हें पढ़ान कहीं करना है और घनी पढ़ लिख जाए तो गुणों दुख पाई। तो बना देखो ऐडी सोच छका लुगारी होवे नहीं, बात बहुत ही गलत हो, क्योंकि मैं ना देखो इरू आपा अपनी बेटी रो आज और कल दोनों ने नरक बना देवा, क्योंकि देखो बिना समय रो जो को चक्र है वो बड़ी तेजी चल है और जीवन में एक घना ही तरह रा बदलाव आ जावे। आज जो को समय है वो काल नहीं रहे और काल होवे जो को परसों नहीं रहे, समय री गति ने देखो कोई नहीं बांध सके और आगे जीवन में कहीं होने वालों है वो विधाताओं बढ़कर कोई नहीं जान सके। इस वास्ते देखो अपने बालिका ने शिक्षा दिलावनो बहुत जरूरी हो जावे, क्योंकि बिना बा एक दिन आपने माता पिता रो घर छोड़न दूजी जगह जावे और बी जगह पर बिरे साथ कई होना है और बिरे भविष्य में कई निखेड़ो है वो तो देखो समय आवन पर ही ठा पड़ी है नी। और जब देखो पढ़ने रो शिक्षा रो शिक्षा ग्रहण करने रो समय ही जा चुके हो तो बीरे बात बेटी ने पढ़ावन पर देखो घणो जोर दी उन्हों, क्योंकि देखो अगर समय निकल गयो तो बीरे बात तो की भी नहीं हो सके। और देखो जब बात शिक्षा ग्रहण करी पढ़ी लिखी जदि बाप रे पगा माता खड़ी उन आत्मनिर्भर बन सके और जीवन में आवन वाली मुस्कुरानो सामनो भी कर सके है नी। तो बना देखो आज के समय में भी घणो बदलाव हो गयो है, आप जट ही नहीं देखा बट नहीं बेटियां बड़ी बड़ी अफसर बनन नौकरियां कर रही है, कटे डॉक्टर इंजीनियर बनी उड़ी काम करे और वे घर और बारे ने पूरी तरह भी संभालन राख रखियो है और पढ़नू तो बिना देखो बालिका ने आपरो भलो बुरो सोचने री शक्ति रो भी विकास हुए और वे शिक्षा रे महत्व ने जाने। और अबार देखो अपनी सरकार भी है नहीं बालिका शिक्षा वास्ते कई तरह की एडी योजना चलावे जगह में बाने कही है कि कम फीस में कम शुल्क में पढ़ावे और कई तो ऐडा भी योजना में जगह में बालिका शिक्षा ने निःशुल्क ही पढ़ाया जावे है नी। तो बीरे साथ ही देखो आपने कई जगह यान का भी नियम योजना चलाई हुई है, एक बीर में किताबा और अन्य पढ़ाइयों जुड़ी हुई सामग्री भी फ्री में उपलब्ध हुआ और अपने गांव शहरा में सब भाई बहनों ने देखो इरो फायदा उठावनो है नी। और घर री बालिका ने शिक्षा प्राप्त करने वास्ते जरूरी स्कूल भेजनो है नी। तो बना देखो बाता हालापा आगे भी करा ला।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: बिना दिखू जत जत धरती पर अधर्म फैले, मिनक ने धर्म री राह दिखाना है, सच्चाई रो मार्ग पर चालने री सीख दे मिने। इधरा पर समय समय पर कोई ना कोई साधु संत महात्मा पुण्य आत्मा देवता रो जन्म होवे, है नी। जिर मैं देखो अपना लोक देवता गोगा जी भी आवे। गोगा जी रो जन्म गोगा मेड़ी नामक स्थान पर होयो और यह समाज अनेक कुप्रथा ने भी समाप्त कर मानव जाति ने प्रेम भाईचारा रेवन जाति पातिरा भेदभाव समाप्त करने रो संदेश दियो। और माने देखो बताया मार्ग पर चालन मानव जाति रो कल्याण तो होयो ही हो, और माने महान त्याग बलिदान लगान जनमानस रा देवता रे रूप में प्रसिद्ध भी होया। और आज भी आने जन्म स्थान गोगा मेड़ी में भारी जनमानस रो मिलो लागे, जिरमें लाखारी तादाद में लोग अपनी मनोतियां और भेंट लेना वे दर्शन री चाहमय गोगा मेड़ी आवे। ग्रामीण अंचल में देखो जब भी कोई मिनक नया पशु बेल लावे तो बना हर विपदाओं दूर रखने वास्ते गोगा जी रे तांती बांधे और कामना करे कि वे हमेशा निरोगा स्वस्थ रहे। और बना देखो गोगा जी रो मेलो उत्सव गोगा मेड़ी धाम पर तो धूमधाम मनायो ही जावे, इरे साथ साथ ये मेला ने पूरा राजस्थान में भी जगह जगह गोगा जी रा पगलिया राखन माने मंदिर थान बनावन सगला माने थ्यावे। और गोगा जी री आज गोगा नवमी रे दिन देखो घनी मेहनत तो आने घोड़ा रे राखी बांधन सिवैया रो भोग भी लगावे और नारियल री जोत करे और कामना करे कि माना परिवार रा सगला जना ने स्वस्थ राखजो, माना घर में सुख स्मृति रो वास हो। और बना देखो गोगा मेड़ी में जठे देखो मेलो भरी जाए, बट आज रे दिन हुई।

या कि देखो आज अगर बस अगला ही जाना कि आज है भादवारी नवमी तिथि, तो आस्थान यहाँ की सपने ठाया कि आज गुगा नवमी है, तो आज हुई बटकई है पशु मेलो भी भरी जाए और लाखारी संख्या में जातरु आवन रही वजह ये मेला ने लक्खी मेलो भी कहवे है नी। और बेना देखो जब मेला री बात चली है तो क्यों नहीं बेना आपा सुन लेवा मेला रो भी यो धूम धड़का वालो गीत, तो लो आओ सुनाओ गीत।

अभी आप सुन रहे थे पणिहारी कार्यक्रम एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी

कि दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? इस प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5,000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13,000 से अधिक

0: लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मजबूर से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नमक हलाल से ये गीत।

किशोरदा की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल के इस गीत के साथ हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक देवता गोगा जी को समर्पित ये लोक भजन। सुनिए पहली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बारा सहित कुछ पूर्वी हिस्से तरबतर। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास, कृष्ण मंदिरों में बधाई गायन और विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में एक बार फिर सक्रिय हुई मानसूनी गतिविधियों के बीच कई इलाकों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज भी दिनभर बरसात होती रही। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा में करीब पौन घंटे मूसलाधार बरसात हुई। श्रीगंगानगर के भूमपुरा, 82 RB और मुकलावा क्षेत्र में बरसात हुई। बारा जिले के अधिकतर हिस्सों में पिछले दो दिनों से रिमझिम बरसात का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि केलवाड़ा क्षेत्र की भैंसासुर नदी के उफान पर रहने से कई गांवों का संपर्क कट गया है।
1: कई जिले के साबाद उपखंड क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की भैंसासुर व बाणगंगा नदी में उफान आ जाने से एक दर्जन गांवों का संपर्क केलवाड़ा कस्बे से कटा रहा। चीपाबड़ो क्षेत्र के अकावट डैम में पानी की आवक होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। साथ ही कस्बादाना क्षेत्र की रेपी नदी में उफान आ जाने से क्षेत्र के पाटन गाँव की कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से आज भी साबाद क्षेत्र की भैंसासुर, बाणगंगा, कुनू, पलको, करई व रेपी नदी उफान पर रही। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारा।
0: दीग जिले के कई इलाकों में पिछले दो तीन दिन से रुक रुक कर बर्नी बरस रहा है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला बना हुआ है। लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भरतपुर जिले में हो रही अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारेठा बांध के कैचमेंट एरिया में हुई तेज बरसात से जलस्तर बढ़ गया है। बांध के दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पुराबाईखेड़ा, कोठीखेड़ा, नारोली, कंजोली सहित कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है। उधर सवाईमाधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडार और कुंडेरा सहित कई जगह पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है। बीते 24 घंटों में सवाई माधोपुर और धौलपुर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। वहीं एक दो जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने रैपिड रेस्पॉन्स टीमों की कार्रवाई के साथ ही एंटी लार्वा गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती राठौड़ ने आज जयपुर से VC के जरिए बैठक कर इस संबंध में प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट रहने को कहा है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि स्वाइन फ्लू और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों के संपर्क में आए लोगों का भी एहतियात इलाज किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में दवाइयां, जांच किट्स और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जिले की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था मामलों की प्रभावी निगरानी रखने और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने को कहा। मुख्य सचिव ने उम्मेद अस्पताल में मरीजों के अधिक भार को देखते हुए उपचार प्रक्रियाओं की बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत बताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, औसिया और बारेसर के सैटेलाइट अस्पतालों में सिजेरियन सेवाएं चरणबद्ध रूप से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: राजस्थान सरकार द्वारा सेफ मदरहुड और हेल्दी प्रेग्नेंट हेल्दी

0: अर्ली चाइल्डहुड के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इनमें प्रसरसक ही एक नया नवाचार था। इसी प्रकार से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर और कंगरू केयर के बारे में मेरी विचार विमर्श हुआ है। जो नवाचार उम्मीद हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं ये कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंटीनेटल केयर में।
1: मुख्य सचिव ने झालामंड स्थित हवाई कोर्ट भवन का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि भवन के गुम्बद की सुरक्षा को लेकर आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी। रिपोर्ट में भवन के सेंट्रल डोम के जर्जर होने और ढहने का खतरा बताया गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। राजनीतिक दल भी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नगर निकाय चुनाव प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भीलवाड़ा और उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां रोड शो किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुष्कर में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र के साथ आज अलवर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। स्थानीय प्रभाव वाले विभिन्न स्थानों पर तीसरे मोर्चे और निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 38,900 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 25,000 से अधिक पुरुष और 13,800 से ज्यादा महिला उम्मीदवार मुकाबले में हैं। जयपुर जिले में सबसे अधिक प्रत्याशी हैं, वहीं सलमपुर जिले में सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 77 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अपने शिक्षकों का सम्मान करने वाला समाज ही सही मायनों में प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और उद्यमिता देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति के साथ ही भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाना देश की प्राथमिकता है।
2: यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं।
1: समारोह में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें प्रदेश के दो स्कूल शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अपनी मेहनत और समर्पण से इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 82 शिक्षक देश के 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
3: इस बार सम्मानित किए जा रहे हैं 82 शिक्षकों में स्कूल शिक्षण से 48, उच्च शिक्षण से 21 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 13 शिक्षक शामिल है। लेकिन यह सम्मान केवल उन शिक्षकों के तक सीमित नहीं है, यह देश के 1,03,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचाता है।
1: देश के महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने एक संबोधन में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा आत्मा का प्रकाश है और इसी से समस्त सृष्टि प्रकाशित होती है।
4: न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् कृतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्।

0: Monsieur Parker has been in the park.
1: धौलपुर जिले में आज पोखर में डूबने से कार सवार चार लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा मनिया थाना इलाके के फूलपुर गांव में हुआ, जिसमें 11 लोगों की डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि कार सवार ये लोग धौलपुर निवासी थे और जहांवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास छाया हुआ है। विभिन्न कृष्ण मंदिरों में बधाइयां गाई जा रही है और वातावरण में जय कन्हैया लाल का उद्घोष गूंज रहा है। इस अवसर पर कई जगह संगीतमय नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जिनमें भजन कीर्तन के साथ भंडारे भी लगाए गए हैं। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। उधर नाथ द्वारा स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में नंद महोत्सव परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। इससे पहले मध्यरात्रि में कान्हा के आगमन को जोर शोर से मनाया गया। ढोल नगाड़ों और शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। भरतपुर के बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ धाम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाता ड्रोन शो आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर। सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारा सहित कुछ पूर्वी हिस्से तरबतर। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास। कृष्ण मंदिरों में बधाई गायन और विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है जसवंत सिंह डूडी ने। नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही बाड़मेर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सियासी हलचल के जोर पकड़ने से चुनावी रंग जमने लगा है। बाड़मेर नगर परिषद और चौहटन नगर पालिका समेत जिले में दो नगरीय निकाय हैं। नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के बाद अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से 189 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 14 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 15 वार्डों में निर्दलीय, 6 में आरएलपी और 1 वार्ड में बीएसपी प्रत्याशी के चुनाव मैदान में होने से संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। 19 वार्डों में चतुष्कोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और आरएलपी के उम्मीदवारों ने चुनावी मुकाबले को अधिक रोचक बना दिया है। दूसरी तरफ चौहटन नगर पालिका के 20 वार्डों में 64 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिले में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 9 सितंबर को बाड़मेर नगर परिषद के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में चौहटन नगर पालिका के लिए 11 सितंबर को सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोनों ही नगरीय निकायों की मतगणना इस महीने की 14 तारीख को की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। बाड़मेर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिव इलाके की ग्राम पंचायत झांफली कल्ला के रहने वाले ख्याति प्राप्त लोक कलाकार समंदर खान मांगणियार को पिछले दिनों वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। लोक संगीत की परंपरागत मांड गायन शैली को बढ़ावा देने के लिए समंदर खान मांगणियार को यह सम्मान प्रदान किया गया। वहीं सेडवा में आलीसरों की बस्ती के रहने वाले युवा बनकर बरीगा राम को बीते दिनों वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के केंद्र सभागार में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। अपनी खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए बरीगा राम को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन और शिक्षक सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हुए। सरहदी जिले में आज गोगा नवमी परंपरागत रूप से श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोक देवता गोगा जी को ढोक लगाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। जिले में कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में मनमोहक सजावट की गई। इस मौके पर जिले में जगह जगह रात्रि जागरण और भजन संध्या के आयोजन हुए। जिले में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन उमंग और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कई जगह पेड़ों के राखियां बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद BSF के जवानों की कलाइयों पर भी रक्षा सूत्र बांधे गए। इसी के साथ बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रजरा के हल्का माए बिरखा, सवाई माधोपुर धौलपुर और बारां समेत उगनी हल्का माए कुछ हिस्सा तर बतर। प्रदेश माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम रा बत्ता असर वाला हल्का माए सघन सर्वे करायो जा वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो बेहतर शिक्षा हुई विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज पूरा प्रदेश माए नंदोत्सव रो उमाव। कृष्ण मिंद्रा माए बधाई गावण और न्यारी न्यारी थोड़ा शोभा यात्रा वारा कार्यक्रम। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। राज्य में चौमासारी बिरखा रो सिलसिलो उजू शुरू फेंक्यो है। आज कई हल्का माए तेज हवा सागे बारिश हुई। राजधानी जयपुर माए आखा दिन में बरसियो। कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा माय करीब पौन घंटा ताई झमाझम बिरखा भी। श्री गंगानगर जिला रा भोमपुरा 82 RB और मुकलावा हल्का माई पानी बरसियो। 12 जिला रा घनखर हल्का माई लाडला दो दिन छांटो छिटको फेरियो है। माणा खबर नवीस बतायो के केलवाड़ा हल्कारी भैंसासुर नदी माई पानी उफणबाऊ कई गांव रो संपर्क कटक्यो है।
3: कई जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की भैंसासुर व बाणगंगा नदी में उफान आ जाने से एक दर्जन गांवों का संपर्क केलवाड़ा कस्बे से कटा रहा। चीपाबड़ो क्षेत्र के अकावट डैम में पानी की आवक होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। साथ ही कस्बादाना क्षेत्र की रेपी नदी में उफान आ जाने से क्षेत्र के पाटन गाँव की कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से आज भी शाहबाद क्षेत्र की भैंसासुर बाणगंगा कुनू पलको करई वो रेपी नदी उफान पर रही। लक्ष्मीचंद नागर आकाशवाणी समाचार 12।
1: डीग जिला रा कई हल्का माए लाडला दो तीन दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। लगातार बारिशों साखा ने नुकसान भेवन री शंका है। ये बीच भरतपुर जिला माए फह रही चोखी बिरखाओं बंधा माए लगातार पानी आ रियो है। बारेठा बंधा माए पानी पुगावन वाला हल्का माए फह रही तेज बरसात बांध माए पानी रो लेवल ऊंचो आ रियो है। बंधारा दो दरूजा खोलर बत्तो पानी निकाले उचारियो है। पुराबाई खेड़ा कोठी खेड़ा नारोली और कंजोली समेत कई ठोड़ा
4: जनता ने सावचेत कर लोगों हिफाजत वाली ठोड़ा जावण रियरज करी ची है। सवाई माधोपुर जिला में आई वह रही लगातार बारिश हूं नदी नाला उफण वाला गया है। खंडार और कुंडेरा समेत कई ठोड़ा पानी भर जावण आवण जावण माथा असर पड़ो है। लाडला 24 घंटा में सवाई माधोपुर और धौलपुर में 10-10 सेंटीमीटर उमबत्तो पानी बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब काल भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे हल्की मझला दर्जारी बरसात फेवन रे आसार है। हालांकि एक दो ठोड़ा तेज बिरखारी संभावना है। प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया और स्वाइन फ्लू समेत नैरी नैरी मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू आरा बत्ता असर वाला हल्का माय सर्वे करायो जावेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ रैपिड रेस्पॉन्स टीम री कार्रवाई सा गई मच्छर पनपबाऊ रोकण रा काम माथे लगातार निगरानी राखण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रजरिया मीटिंग कर इबारा माय राज्य रा सगला चिकित्सा संस्थान ने सावचेत रहवण बाबत कहो। प्रमुख शासन सचिव कहो कि स्वाइन फ्लू और दूजी मौसमी बीमारियों मंदा व्या लोगों रा संपर्क में आवण वाला रोई एहतियातन इलाज करियो जाउनु चाहिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जोधपुर में जिला रे चिकित्सा और स्वास्थ्य जुड़ी व्यवस्थाओं रो जायजो लेवण सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव मातृ और शिशु स्वास्थ्य जुड़िया नवाचार ने असरदार तरीका लागू करण माथे जोर दीनो। वे बत्ती जोखिम वाली आस वाली लुकाइया री असरदार निगरानी रखण और नुआ जन्मया बच्चा सारू इलाज री व्यवस्थावां मजबूत करण बाबती कहो। मुख्य सचिव उम्मेद अस्पताल में मरीजा री बत्ती तादाद न ध्यान रखता थका इलाज रा काम माथे बेहतर निगरानी री जरूरत बताई। वे बिलाड़ा भोपालगढ़ पीपाड़ ओसिया और बालेसर रा सैटेलाइट अस्पताल में ऑपरेशन जापा करावन रे सेवाई शुरू करण रा हुकम दीना।
5: राजस्थान सरकार द्वारा सेफ मदरहुड और हेल्दी प्रेग्नेंट हेल्दी चाइल्डहुड के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इनमें प्रसवसख ही एक नया नवाचार था। इसी प्रकार से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मॉनिटरिंग एंटीनेटल केयर और कंगरू केयर के बारे में मेरी विचार विमर्श हुआ है। जो नवाचार उम्मीद हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं ये कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंटीनेटल केयर में।
4: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू उम्मीदवार वोट देवन वाला ने लुभावन री पूरी कोशिश कर रहा है। सियासी पार्टियां ही आप अपरा उम्मीदवारा रा प्रचार माय पूरो जोर लगा रही है। नगर निकाय चुनाव प्रचार रा सिलसिला माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भीलवाड़ा और उदयपुर माय रोड शो कीना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ पुष्कर माय निकाय चुनाव री तैयारियां जुड़ी मीटिंग कीनी। दुजिकानी विधानसभा में विपक्षरा नेता टीका राम जूली कांग्रेस रा राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सागे आज अलवर में पार्टी रो घोषणा पत्र जारी कीनो। स्थानीय असर वाली छोड़ा दूजा उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोट देवन वाला ने लुभावन री कोशिश कर रहा है। 9 और 11 सितम्बर ने फेवन वाला स्थानीय निकाय चुनाव सारू 38,900 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। आमाय 25,000 उम्बत्ता पुरुष और 13,800 उम्बत्ती महिला उम्मीदवार शामिल है। जयपुर जिला माय सब उम्बत्ता जदक सलुम्बर जिला माय सब कम उम्मीदवार है। इविचे 77 वार्डा माय उम्मीदवार सगड़ा री एक राय चुनी चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि गुणवत्ता वाली भणाई लिखाई रे जरिए ही विकसित भारत रो सपनो साचो करियो जा सके है। वे आज शिक्षक दिवस रे मौके नई दिल्ली में राखी जिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसा माय बोल रही ही। राष्ट्रपति कहो कि शिक्षका नो मान करण वालो समाज ही सही मायना माय बरकत करे है। वे कहो कि बेहतर भणाई लिखाई कौशल विकास और उद्यमिता देश ने आगे ले जावण माय खास काम करे है। श्रीमती मुर्मू कहो कि ज्ञान री ताकत सागे भारत ने दुनिया री कौशल राजधानी बनावण माथे देश रो खास ध्यान है।
6: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते।
4: जलसामाय राष्ट्रपति बेहतरीन काम करने वाला अध्यापका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा। नवाजी ज्या शिक्षका माय जयपुर के न चाकसूरा टुमली का बासरे मिडिल स्कूल री डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ रा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल रा डॉक्टर दिव्यंदु सैनी शामिल है। ये मौका शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के मेहनत और समर्पण काम कर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करन वाला ए 82 अध्यापक देश रा 1,32,00,000 शिक्षक री नुमाइंदगी करे है।
7: इस बार सम्मानित किए जा रहे हैं 82 शिक्षकों में स्कूल शिक्षण से 48, उच्च शिक्षण से 21 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 13 शिक्षक शामिल है। लेकिन यह सम्मान केवल उन शिक्षकों के तक सीमित नहीं है, यह देश के 1,03,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25,00,00,000 विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचाता है।
4: देश रा महान शिक्षाविद भारत रत्न नवाजी जिया पहली वाला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन री जयंती हर साल शिक्षक दिवस रा तौर मनाई जावे है। माना एक संबोधन में डॉक्टर राधाकृष्णन कहो हो के शिक्षा आत्मा री रोशनी है जिनु पूरी कायनात रोशन फे है।
8: न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् कृतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
4: स्वच्छता ही सेवा अभियान देश भर में साफ सफाई रा प्रति लोगों में जागरूकता आई है। इस साल 17 सितंबर ई अभियान रो नवो दौर शुरू हैला जो 2 अक्टूबर तक चलेला। धौलपुर जिला में मनिया थाना हलकारा फूलपुर गांव में आज एक कार रे पोखर में पड़ जावण इनमें सवार 4 जना री मौत हुई की। पुलिस रे मुजब हादसा रे कारण 11 जना रे डूब जावण री शंका है। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी बतायो के हादसा रिठौर बचाव रो काम चल रो है। कलेक्टर बतायो के कार में सवार धौलपुर रा रहवासी जहारवीर बाबा रा दर्शन सारू जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज नंदोत्सव मनायो जा रो है। ई मौके भगवान कृष्ण रा न्यारा न्यारा मिंदरा माए बधाइयां गई जा रही है। कई ठोणा भजन कीर्तन सागे भंडारा लगाया जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत न्यारी न्यारी ठोणा शोभा यात्रावां निकाली जा रही है। श्रीनाथ द्वारा माए वल्लभ संप्रदाय री प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मिंदर माए नंद महोत्सव रीत मुजब मनायो जा रो है। इनु पहले आधी रात ने कान्हा रायावण री भगत ढोल नगाड़ा और शहनाई री मंगल ध्वनि बीच ठाकुर जी रो अभिषेक करीचियो। भरतपुर रा बांके बिहारी समेत न्यारा न्यारा मिंदरा माए जातरुआ री लेना नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिला रा सांवलिया सेठ मिंदर माई मोटी तादाद माए जातरू पूग रहा है। वठे जन्माष्टमी रे मौके भगवान श्री कृष्ण रा न्यारा न्यारा रूपां रो दर्शाव करन वालो ड्रोन शो राखी चियो। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कानून न्याय और कानून री भणाई रा बारा माए मासिक व्याख्यान माला शुरू करन रो ऐलान किन्नो है। शिक्षक दिवस रे मौके करी जाए ऐलान रे मुजब इन रे मार्फत कानून न्याय और समाज जुड़िया मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। हर माह एक महत्वपूर्ण विचार माथे आधारित इन व्याख्यान माला रे जरिए न्यायाधीश कानून रा जानकार संगठन और शिक्षाविद एक सागे विचार करेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। राज्य रा कई हल्का माए बिरखा सवाई माधोपुर धौलपुर और बारां समेत उगनी हल्का माए कुछ हिस्सा तर बतर। प्रदेश माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू बत्ता असर वाला हल्का माए सघन सर्वे करायो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो बेहतर शिक्षाओं विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करियो जा सके है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज पूरा प्रदेश माए नंदोत्सव रो उमाव। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
9: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के जिर्मी चैनल को। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा श्रोताओं ने थांगा भाई राजू चौधरी वो गणो गणो राम राम सा। तो किसान भाया, आज है विशेष दिवस जिको है शिक्षक दिवस। और देखो, शिक्षक दिवस मनाया जावे अपना देश का दूसरा राष्ट्रपति रिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस के मत है। और देखो, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जिको मनाया जावे है वो एक शिक्षा सु प्रेरित करवा के लिए और अपना समाज ने आगे बढ़ावा के लिए और शिक्षा का महत्व न समझावा के लिए मनाया जावे। तो देखो, ये जो महत्व है शिक्षा जीवन को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यो अपन सही और गलत की पहचान करबो सिखावे। शिक्षा ही अपन ज्ञान और बुद्धि को विकास करावे और हर व्यक्ति ने यो आत्मनिर्भर और सक्षम बनावे। शिक्षित व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को सामना करे और आगे बढ़ सके। शिक्षा अपन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने बढ़ावा में मदद करे। यह एक बेहतर रोजगार और करियर का जो अपना अवसर है बन खोले। शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अपने सुधार करे, समाज में समानता और भाईचारा बढ़ावे और शिक्षित समाज ही एक मजबूत राष्ट्र को निर्माण करे। इसलिए शिक्षा अपन अच्छा संस्कार, शिष्टाचार और मानवीय मूल्य सिखावे है और यह अपनी सोच समझ और तर्क करवा की जो क्षमता है बिन भी बढ़ावे। शिक्षा से आप गरीबी और अज्ञानता का जो अंधकार है बिन आप दूर कर सका और शिक्षा से ही महिला का जो सशक्तिकरण और उत्थान के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा सका। शिक्षा तकनीकी और आधुनिक दुनिया का साथ चलाव सिखावे। तो शिक्षा से स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़िया बेहतर फैसला लिया जा सके। और देखो, जीवन भर सीखवा और निरंतर आगे बढ़वा की जो प्रेरणा है वह अपन शिक्षा से ही मिले। इसलिए हर व्यक्ति ने शिक्षा पावा को समान अधिकार मिले। शिक्षा एक उज्ज्वल और शांतिपूर्ण अपना जो भविष्य है बिना आगे बढ़ावा को एक कुंजी है। शिक्षा शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जल और केवल रास्ता ही नहीं दिखावे बल्कि विद्यार्थी के भीतर भी ज्ञान को प्रकाश जगा देवे जिऊँ वो अपना रास्ता खुद निकाल सके। और एक सच्चो शिक्षक केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देवे, वो विद्यार्थी ने सोचवा, समझवा और निर्णय ले और स्वयं पर विश्वास करवा की राह दिखावे। इसलिए अपने हमेशा अपना जो शिक्षक है वहाँ का ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन सम्मान कर और वहाँ का बताया बढ़िया रास्ता पर अपन चालवा को प्रयास करना चाहिए क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन में अपन सही दिशा मिल सके और सफलता को मार्ग अपन मिल सके। तो देखो, कार्यक्रम ने आगे बढ़ाऊँ और आज अपना जो स्टूडियो में पधार गया है जानकारी देवा गया कृषि विशेषज्ञ है जिको जानकारी देसी अपने राजस्थान में भेड़ और ऊन विकास का नया आयाम का बारे में और जानकारी द्वारा अपन जितेंद्र जी जानकारी दे वाला विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तोमर निदेशक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक से। तो मिलर लेवा जानकारी।
7: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर विषय विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे बहुत ही अच्छी जानकारियां हम लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण तोमर। आप निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा में और आज हमें जानकारी देने वाले हैं भेड़ पालन के बारे में। तोमर साहब नमस्कार।
8: नमस्कार साहब।
7: तोमर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है, अविका नगर में स्थित है, इसका मूल कार्य क्या है और किस प्रकार से भेड़ पालन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है?
8: देखिए, हमारा जो संस्थान है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
7: जी
8: जो पूरे देश की कृषि और पशुपालन व्यवस्था को देखती है उसके अंतर्गत काम करता है
7: जी।
8: इसकी स्थापना 1962 में आपके मालपुरा जो जिला टोंक है
7: जी जी जी
8: वहाँ पे स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ और भेड़ों के साथ खरगोश पालन के विभिन्न आयामों पे शोध प्रक्रियाओं के माध्यम से नए नए तकनीकियों को विकसित करना, उन विकसित तकनीकियों को भेड़ पालकों तक, किसानों तक पहुंचाना
7: जी।
8: ताकि प्रति पशु उत्पादन बढ़ाया जा सके, लागत कम की जा सके और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। तो इन सब काम को देखते हुए हमारे संस्थान के 3 उपकेंद्र हैं
7: जी।
8: हमारा मुख्य संस्थान का जो हेड ऑफिस है वो अविकानगर में है, जो मालपुरा से पहले पड़ता है
7: जी।
8: इसका एक केंद्र बीकानेर में है जो कारपेट के लिए जो फेमस भेड़ नस्लें उसके ऊपर काम करते हैं
7: जी। जी,
8: एक इसका उपकेंद्र हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू गढ़सा में
7: जी,
8: जो ठंडे प्रदेश की जो भेड़ नस्लें हैं, जो अच्छी ऊन उत्पादक हैं, उनके आनुवंशिक सुधार के लिए काम करते हैं
7: जी।
8: एक केंद्र हमारा साउथ में है, कुड़ेकनाल मनावनूर हिल्स में
7: जी।
8: वो वहां के जो भेड़ पालक हैं या जो वहां के उस क्षेत्र की जो भेड़ों की नस्लें हैं उनके सुधार के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश की लगभग 8 करोड़ भेड़ों के सर्वांगीण विकास और इनको पालने वालों की जो आमदनी बढ़ाने का काम हमारा संस्थान करता है। समय समय पे संस्थान बाजार और भेड़ पालकों की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए भेड़ों की नस्लों को विकसित करता है
7: जी।
8: जैसे मैं बात करूं भारत मेरिनो, अविकालीन और अविशान जो हाल फिलहाल में हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है
7: जी जी,
8: ये भेड़ पालकों की उन जरूरत को पूरा करते हैं जो बाजार में जिसके हिसाब से इनकी डिमांड आती है। कुछ भेड़ नस्लें हमारी अच्छी ऊन उत्पादक हैं, इसमें भारत मेरिनो को हमने विकसित किया, ठंडे प्रदेश में उसको पाला जाता है
7: जी, जी।
8: तो हमारा जो 2 सेंटर है, जो कुल्लू में है वहां और जो मनावनूर में वहां, वहां भारत मेरिनो को पाल रहे हैं जिससे अच्छी ऊन के कपड़े ऊनी कपड़े बनते हैं
7: जी।
8: इसके अलावा एक अविकालीन जो भेड़ बनाई थी वो भेड़ हमारी रैम्बुले एक विदेशी भेड़ नस्ल के क्रॉस से बनाई थी, हमारी लोकल मालपुरा का उसमें हमने उससे समागम कराया था 50-50% के उससे
7: जी, जी।
8: ये भेड़ हमारी अच्छी ऊन और अच्छे मांस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हमारे संस्थान ने जो अविशान जो अभी 2016 में भारतीय भेड़ पालकों के लिए हम लोगों ने रिलीज की है वो ज्यादा बच्चे देने में सक्षम है। मैं आपको बताना चाहूं कि जनरली भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है
7: जी,
8: लेकिन हमारी जो अविशान है भेड़ पालकों की शान है ये एक साथ में 2 से 4 बच्चे देती है
7: जी।
8: तो इस प्रकार से संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश में जो बढ़ती हुई मांस और ऊन की मांग को पूरा करने के लिए नए नए नस्लों को विकसित किया है। साथ ही जो हमारी अपनी देसी नस्लें हैं, जो 45 भारतीय देसी नस्लें हैं जो हमारे अपने देश की मूल निवासी रही हैं, उनके आनुवंशिक सुधार के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है
7: जी। जी,
8: यदि मैं बात करूं हमारे जो संस्थान की स्थापना हुई उस वक्त प्रति भेड़ जो उत्पादन था वो बहुत कम था
7: जी।
8: यदि 6 महीने की हम बात करें, 6 महीने पे जो शरीर भार था वो लगभग 13 से 14 किलो था
7: जी।
8: लेकिन हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में या विभिन्न परियोजनाओं से या एक होलिस्टिक अप्रोच से जो हम लोगों ने तकनीकियां विकसित की हैं, आज 6 महीने हमारी भेड़ों का जो वजन है वो 28 से 30 किलो, और यहां तक कि थोड़ा सा और उस पे हम लोग ध्यान से यदि वैज्ञानिक तरीके से हम पालते हैं तो उसमें 40 किलो तक भी वजन प्राप्त होता है
7: जी, जी।
8: इसके अलावा हम दुम्बा एक भेड़ नस्ल है जो हमारे भारतीय भेड़ों से लगभग 3 गुना वजन की होती है
7: जी।
8: तो उस अनुसंधान के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसके कुछ ऐसे फ्लोक तैयार कर रहे हैं जिनसे किसानों को बीज के रूप में अच्छे जानवर मिले
7: जी।
8: हमारे संस्थान से लगभग हम लोग हमारी अपनी सीमाएं हैं 2000 अच्छी भेड़ों को बीज के रूप में हम किसानों को देते हैं
7: जी,
8: जिससे किसान अपनी भेड़ों की नस्लों का सुधार करता है। और निश्चित ही जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त भेड़ का जो योगदान था वो नगण्य।

0: अतिथि भेड़ को किसी भी जलवायु में पाला जा सकता है
1: जी।
0: आप यदि बात करें तो माइनस पचास जो लद्दाख का टेम्परेचर है
1: जी, जी।
0: और प्लस पचास जो आपके बाड़मेर जैसलमेर का टेम्परेचर है
1: हाँ।
0: तो आप देख रहे हैं माइनस पचास से लेके प्लस पचास तक के टेम्परेचर में भेड़ों को पाला जा सकता है। मैं यूं कहूं कि ऐसा देश में कोई गांव नहीं जहां भेड़ या बकरी ना पाली जाती
1: है। जी जी
0: ये रेत में भी पाली जाती है। बाड़मेर की आप बात करें जो जैसलमेर की बात और ये हमारे बंगाल में जहां सुंदरवन है
1: जी
0: जहां वाटर लॉगिंग एरिया है
1: जी
0: तो वहां पे भी इसको पाला जा सकता है। ये ऐसा पशु है ये हर जलवायु में फिट है और इसकी खाने के लिए भी कोई ऐसी ज्यादा जो गाय भैंस के लिए जरूरत होती है अच्छे चारे की इसके ऐसा कुछ नहीं। ये तो कचरा खा के कंचन पैदा करती है सब
1: जी।
0: तो किसी कैंपस में यदि आपको लगता हो कि यहाँ पे ये बायोलॉजिकल लॉन कटर है आपको लगता हो कि भाई हमारे यहाँ किसी कैंपस में यदि हम चार पांच भेड़ छोड़ दें तो वहां पे जो खरपतवार जैसी घास है उसको काटने के लिए आपको बाहर से मजदूर या मशीन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़ अपने आप में उसको काटेगी और उसके बदले में आपको खाद देगी ऊन देगी और दूध देगी। यदि दूध की मैं बात करूं भेड़ों की भेड़ों का दूध चार पशुओं में सबसे तगड़ा दूध है साहब
1: जी।
0: यदि हम लोग कहते हैं भैंस के दूध की नहीं नहीं साहब भैंस के दूध से भी अच्छा दूध भेड़ का दूध है
1: जी।
0: और मैं तो ये कहता हूँ कि भेड़ का दूध साहब ये दूध नहीं है तो दवाई देती है ये जड़ी बूटियां खा के
1: जी, जी।
0: और जैसा जड़ी बूटियां जितनी खाएंगी उसी हिसाब से इनका दूध का अर्क आएगा
1: जी
0: और दूध में इसके गुणकारी वो रहेंगे
1: जी।
0: लेकिन प्रति पशु अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें परंपरागत तरीकों के साथ साथ नई जो तकनीक है उसको साथ लेके चलना होगा। नई तकनीकियों में बात करूं तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज है और जिस भेड़ पालक ने विज्ञान की विकसित चीजों को अपने रेवड में समाहित किया है उस भेड़ पालक ने जमीन आसमान का फर्क देखा है और आमदनी को बढ़ाया है। वो नस्ल से लेके उसके आवास की बात हो या उसके आहार की बात हो या उसके स्वास्थ्य की बात हो इवन मार्केट
1: जी।
0: मार्केट बहुत बड़ा इशू है
1: जी।
0: हमारा भेड़ पालक या हमारा किसान करता सब कुछ है लेकिन जब उसके बेचने की बात आती है तो वहां वो चूक जाता है। वो बिचौलियों के भरोसे अपने प्रोडक्ट को बेचता है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा जो नुकसान है आपके इस माध्यम से मैं उनको किसानों को भेड़ पालकों को चेताना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि इस मार्केट में भी वो अपनी हिस्सेदारी तय करें
1: जी
0: और अपने प्रोडक्ट का अपना मार्केट तलाशें
1: जी।
0: अपने प्रोडक्ट को वहां बेचे जहां उसको ज्यादा पैसा मिलता हो
1: जी।
0: तो निश्चित ही जो बिचौलिया हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो डीलर हैं या जो व्यापारी हैं इसके तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इसको काम को करेंगे यदि बाजार की व्यवस्था को भी संभालेंगे तो निश्चित है उनको ज्यादा आमदनी होगी
1: जी। तोमर साहब यहां जब हम भेड़ों की बात करें आपने पांच सितारा जानवर इसको कहा है
0: जी जी।
1: तो अगर हम भारत की बात करें विशेष रूप से हम राजस्थान की बात करें तो भेड़ों का जो पालन है वो मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है या उनके उद्देश्य से अधिक किया जाता है?
0: देखिए समय के साथ साथ भेड़ पालन का रूप बदला है। पहले जब हम पढ़ते थे या यूं कहें कि आज से 40 साल पहले भेड़ को उनका प्राय माना जाता था
1: जी।
0: और हमारे राजस्थान के दूरस्थ जो इलाके हैं आज भी वहां पे ऊन की बनी हुई चीजों के बिछोने या ओढ़ने इनको पट्टू है इनको यूज किया जाता है
1: जी।
0: लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें बाजार में ऐसी आ गई हैं जिसने हमारी भेड़ों की ऊन को बेसकीमती ऊन को रिप्लेस किया है। ये मैं बात करूं तो जो प्लास्टिक का जो फाइबर आया
1: जी हाँ जी हाँ
0: ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपने देखो अगर शरीर में खुजा है या और स्किन डिजीजेज हैं ये
1: जी,
0: सस्ता सुंदर जरूर है सस्ता भी है लेकिन शरीर के लिए बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं है
1: जी।
0: तो ये अभी थोड़ा सा भेड़ों की ऊन को कम किए इसने किया है और अब किसानों ने भेड़ पालकों ने भेड़ को मांस के लिए पालना शुरू किया है तो उनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है। यूटिलिटी बदली है लेकिन कम नहीं हुई है
1: जी।
0: देश में जो एक अपार संभावना है मांस की एनिमल प्रोटीन की तो हमारी भेड़ बकरियों से ही पूरी हो रही है
1: जी, जी, जी।
0: और लेकिन अभी भी ऊन के लिए अच्छा स्कोप है इसके दूसरे भी उपयोग बहुत हैं। हमारा संस्थान बहुत सी जो जिस ऊन का कुछ नहीं बनाया जा सकता उसकी बहुत सी प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट को बना के हम किसानों को भेड़पालकों को बता रहे हैं कि आप भी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बना के
1: जी, जी।
0: आप बाजार में अतिरिक्त पैसा कमा सकते
1: जी।
0: तो भेड़ पालन की उसकी महत्वता समय के साथ साथ बढ़ी है और जब देश आजाद हुआ उस वक्त भेड़ों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी आज 8 करोड़ है हमारे राजस्थान में भेड़ों की संख्या कम हुई है। इसका एक मेन कारण जो मैंने बताया, एक तो ऊन की कीमत गिरी है, दूसरा जब भेड़ों को मांस के लिए पाला जा रहा है तो हमारे राजस्थान में अभी मीट ईटर या उतने मांसाहारी लोग नहीं है। संख्या में परिवर्तन जरूर आया है, पहले 15% थे, आज की यदि मैं बात करूं तो 25-30 के करीब पहुंच रहे हैं। तो संख्या बढ़ जरूर रही है एनिमल प्रोटीन के रूप में, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां तीनों टाइम या

0: 99% लोग या इवन मोर देन 99% मीट को या एनिमल प्रोटीन को पसंद किया जा रहा है
1: जी।
0: तो इन प्रदेशों में यहाँ से भेड़ों का पलायन होना या यहाँ से ट्रेडिंग होके वहां जाना
1: जी।
0: या यूं कहें कि उन प्रदेशों के लिए यहाँ पे भेड़ों को पाला जाना ये सब कारण है कि भेड़ पालन अपना अपनी इम्पोर्टेंस बनाए हुए है
1: जी।
0: और एनिमल प्रोटीन की डिमांड को काफी हद तक भेड़ पूरा कर रही है
1: जी।
0: और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा पशु जिसकी खुद की डिमांड तो कम है
1: जी,
0: उसका छोटा सा शरीर है और कचरा खाती है, जो हर पशु से बच जाता है वो भेड़ों के नसीब में होता है
1: जी,
0: और ये भविष्य का पशु है
1: जी। तोमर साहब, यहाँ जब हम आमदनी की भी बात कर रहे हैं, किसानों की भी बात कर रहे हैं, जो भेड़ पालक है उनकी भी बात कर रहे हैं, मांस उत्पादन भी एक उसका तरीका है, ऊन उत्पादन भी एक उनके आय का तरीका है, वैसे ही जो भेड़ का दूध आपने कहा कि बहुत बेशकीमती है, भेड़ के दूध का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि भेड़ के दूध को प्रसंस्करित करके उसके उत्पाद बनाए जाएं और उसका मार्केट अगर डेवलप हो तो ये किसानों के लिए और ज्यादा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। हमारे संस्थान में, या मैं भेड़ पालकों को बताऊं, भेड़ के दूध से भी वो सब बनाया जा सकता है जो गाय भैंस के दूध से बनाया
1: जी,
0: जा रहा है
1: जी, जी।
0: हमारे संस्थान ने खुद ने इसका रसगुल्ला भी बना रखा है, इसका पेड़े भी बना रखे हैं, इसकी कुल्फी लाजवाब है स्वाद में
1: जी,
0: और घी बहुत सी मेडिसिनल आवश्यकताएं हैं आयुर्वेदिक में, उसको बेस के रूप में ये काम करता है
1: जी।
0: आपने सुना होगा कि भेड़ के दूध की मालिश या जहां चोट लग
1: हाँ,
0: जाती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: या मांस फट जाता है वहां पे ये है, लेकिन साइंटिफिक बेस इसका अभी खोजने में हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इसके फैट का जो ग्लोबुल है वो बहुत छोटा है
1: जी,
0: डायरेक्ट ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो भेड़ के दूध का वैल्यू एडिशन करके आप बाजार में इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भेड़ों में दूध कम होता है, लगभग 500 से 700 ग्राम या कुछ भेड़े 1 किलो तक भी दूध देती हैं, मेरा मानना यह है कि इस कीमती चीज को बाजार में लाके यदि भेड़ पालक बाजार में पैसा कमाना चाहता है तो कमा सकता है, वो सोचता है कि भाई भेड़ों के मेमने को ये दूध मिल जाए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक शोध अब कहते हैं कि आप भेड़ के मेमनों के लिए दूसरे सस्ते दूध जो मिल्क रिप्लेसमेंट है उसको यूज कर लें, जिसकी कीमत 15 से 16 रुपए किलो है, लेकिन इस कीमती भेड़ का दूध यदि मार्केट में आप लोग इसको एजुकेट करोगे, एडवोकेट करोगे, ये पहलवानों के लिए या जो रेस लगाते हैं उनके लिए सबसे तगड़ा दूध है, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है
1: जी,
0: फैट सबसे ज्यादा है
1: जी,
0: और गाढ़ा है, इसका पाउडर बना के भी आप एक गिलास दूध के एक गिलास पानी के साथ पी के अपनी जो पहलवानी है, कसरत है या जो हार्ड काम जो करते हैं, मजबूती का काम जो करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दूध भेड़ पालन में दूध भी अपनी एक इम्पोर्टेंस आगे आने वाले समय में रखेगा
1: जी,
0: और आगे जो दूध है दूध के नाम पे नहीं मिलेगा, भैंस का दूध अलग बिकेगा, बकरी का दूध अलग बिकेगा, ऊंट का दूध अलग बिकेगा, गधे का दूध अलग बिकेगा और भेड़ का दूध अलग बिकेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जैसे जैसे हमारे लोगों में जागरूकता आ रही है उसके हिसाब से डिमांड जनरेट होगी, लेकिन वो डिमांड तब आएगी तब जब हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि भाई भेड़ के दूध में भी बहुत गुणकारी है और बहुत सी बीमारियों में या बहुत सी आवश्यकताओं में, या ये वैसा ही दूध है जैसा गाय भैंस का दूध है
1: जी, जी।
0: तो डेफिनेटली एक गाय या एक भैंस को पालने की जगह यदि एक किसान 50 भेड़ आराम से रख लेता है, यदि एक गाय की बात करें तो एक गाय कितना दूध देगी, 5 से 7 लीटर
1: जी,
0: 8 लीटर
1: जी।
0: यदि आप 50 भेड़ों की बात करेंगे तो 50 भेड़े में से मान लिया 30 दूध दे रही है
1: जी,
0: एक भेड़ 1 लीटर दूध दे रही है आपकी अच्छी यदि खिलाई पिलाई है, आधा लीटर तो आपने दे दिया उसको उसके मेमने को, उसके मेमने के शरीर की भी आवश्यकता पूर्ति होगी
1: जी,
0: आधा लीटर और बच गया, तो इस प्रकार से 30 भेड़ों से 15 लीटर दूध तो आपके घर में आ गया
1: जी,
0: 15 लीटर में आप 5 लीटर आप अपने घर में यूज करो, हालांकि 5 लीटर आजकल घर में कौन पी रहा है
1: जी,
0: लेकिन फिर भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में दूध है। 10 लीटर को आप बाजार में बेचो, जब बाजार में दूध की कीमत आएगी तो कम से कम 50-60-100 रुपए जो भी है, जैसे ही पता लगेगा लोगों को इतना गुणकारी है तो गुण के आधार से ही कीमत तय होगी। तो इस प्रकार से यदि 30 भेड़े आपने रखी तो हर वक्त आपके घर में दूध रहेगा, 50 भेड़े यदि आप रखते हो तो 30 तो एक बार आ रही है, फिर दूसरी भी आ जाएगी, फिर और अगले महीने दूसरी और भी आ जाएगी, तो हर वक्त आपको दूध मिलेगा, हर वक्त मेमने आपको घर पे मिलेंगे जिसको बेच के आप अपने घर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें काफी स्कोप है
1: जी
0: जी।
1: तोमर साहब, आप निदेशक हैं भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र के, आप भेड़ पालन का भविष्य कहाँ देखते हैं?
0: मैंने कई बार कहा जहाँ कुछ नहीं हो सकता
1: जी
0: वहाँ भेड़ पाल के सब कुछ हो सकता
1: जी।
0: ये ऐसा पशु है जो अकाल में सबसे बाद में प्रभावित, हम जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि राजस्थान में एक ऐसा पशु है जो मिट्टी खा के जिंदा रहता है और भेड़ पालकों को ऊन भी देता है, दूध भी देता है, मैंगनी खाद खाल सब देता है
1: जी।
0: अब जब मैं यहाँ का डायरेक्टर बना, यहाँ का वैज्ञानिक बना, तो मैंने देखा कि मिट्टी खाता तो कैसे है, तो जो मिट्टी में या रेत में यहाँ की जो जो बालू है, यहाँ की जो सैंड है, वो काफी हल्की है
1: जी, जी।
0: पेड़ों के नीचे अपनी सांस से या नाक से फूंक मार के ये उन जड़ों को या उन छोटे से पत्तों को या छोटी जड़ी बूटियों को ये ढूंढता है और उसको खा लेता है, क्योंकि गर्मी के कारण, कम पानी के कारण ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है
1: जी, जी, जी।
0: तो जो इसको नीचे पेड़ों के नीचे थोड़े बहुत जो दिखता है उनको ये निकाल के खाता है, तो पानी की कम आवश्यकता होती है इसको। तो ऐसा सुंदर पशु जिसकी खुद की आवश्यकता कम लेकिन आपकी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखता है
1: जी,
0: तो निश्चित ही भेड़ पालन का बहुत बड़ा भविष्य है। और यदि एक आयाम जो अभी मांस के लिए जो हम बात कर रहे थे, देश में लगभग आंकड़े की यदि बात करूं तो आज 77% के करीब, 77% के करीब लोग नॉन वेजिटेरियन है
1: जी।
0: कभी यह संख्या 35 के करीब थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जैसे लोगों की एनिमल प्रोटीन की डिमांड बढ़ी, भाई क्या हम भी कुछ मिलना चाहिए, तब जाके हमारे देश में आज की ये फिगर है 77 है। देश में प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता है मीट की वो लगभग 12 किलो के करीब है, लेकिन उपलब्धता 7 किलो ही है
1: जी।
0: तो एक गैप है, इस गैप को भरने के लिए आपको अच्छी नस्लों की भेड़ पालनी होगी। अच्छी नस्लों में आप अविशान भेड़ पाल सकते हैं जो 2 से 4 बच्चे देती है, दुम्बा भेड़ रख सकते हैं जो 2 से 3 गुना वजन की होती है और जल्दी उसका शरीर भार अच्छा हो जाता है। इसके अलावा उसका वैज्ञानिक प्रबंधन
1: जी,
0: प्रति पशु वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, प्रति पशु लागत कम करके आमदनी बढ़ाए,
1: उत्पादन बढ़ाए जी।
0: तो इस प्रकार से आप यदि भेड़ पालेंगे तो निश्चित ही देश में अपना एक अलग अलग जलेगी। और मैं तो कई बार किसानों को या इनके किसान के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार है उनको भी कहता हूँ कि भाई दिन के 2 घंटे आप भेड़ या बकरी पालन पे लगा दें, दिन के 2 घंटे
1: जी,
0: सुबह को 9 बजे से पहले 1 घंटा और शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद या जब उसे समय मिले, घर की छत की फेंसिंग करा के 30 से 40 भेड़ों को आराम से इन 1.5 से 2 घंटों में पाल के दिन में सारे आपके काम हो सकते हैं। वो नेता है तो नेतागिरी कर सकता है, दुकान करता है तो दुकान कर सकता है, नौकरी करने वाला नौकरी कर सकता है, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर सकता है। मात्र दिन के 1.5 से 2 घंटे लगा के 40 से 50 भेड़ों को पाल के छत के ऊपर रख के आराम से अपने वर्ष की आमदनी और अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है
1: जी। तोमर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां आज आपने भेड़ पालन के बारे में दी। चलते चलते जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, जो भी भेड़ पालक हमें सुन रहे हैं, क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे?
0: मैं सभी भेड़ पालकों से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यवसाय करने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है
1: जी।
0: आपको कुछ भी करना हो उसका ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, नहीं तो आप असफल व्यवसायी कहलाओगे या आपके मथे आ जाएगा कि भाई ये कुछ नहीं जानता। कुछ भी करें उसका ज्ञान लें
1: जी।
0: आप भेड़ पालन की बात करें तो भेड़ पालन का ज्ञान होना जरूरी है कि वो कौन सी नस्ल रखे, इसका क्या उद्देश्य हो, वो कहां से ट्रेनिंग ले, वो कहां मार्केटिंग करे, वो कैसे काम करे
1: जी।
0: तो ट्रेनिंग हमारा जो संस्थान है, हमारा जो CSWR है, यवी का नगर है, वहां से भेड़ पालन की आपको 8 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग पे सर्टिफिकेट के बाद लोन की भी दूसरी सरकारें देती है कि लोन उसको मिलता है जो जो अपने आप को ये तय कर देता है, हाँ भाई मैं इस व्यवसाय में स्किलफुल हूँ, मैं जानता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, जो आपसे ले रहा हूँ लोन उसको मैं वापस चुका दूंगा
1: जी।
0: तो इस तरह से वो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र से या पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों से ट्रेनिंग प्राप्त करके वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा नहीं है
1: जी,
0: कोई भी काम छोटा नहीं है। सबसे पहले मनुष्य ने इन छोटे पशुओं को ही पहचान के, इसकी इंपोर्टेंस पहचान के इसको डोमेस्टिकेट किया था, अपनाया था
1: जी, जी, जी।
0: तब से लेके भेड़ का, बकरी का या एक और पशु है, खरगोश पालन कभी फिर बात करेंगे
1: जी,
0: ये मनुष्य का साथी बना हुआ है
1: जी।
0: इससे उसको कपड़े भी मिले हैं, ऊन भी मिली है, खाल के कपड़े भी उन्होंने यूज किए हैं
1: जी, जी।
0: और खाद और दूध ये तो मैं बात कर ही चुका हूं। तो इस प्रकार से मेरा आपके इस माध्यम से यही कहना है कि जो भी भेड़ पालक या जो भी बेरोजगार या जो भी युवा भेड़ पालन का काम करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग जरूर ले
1: जी,
0: और ट्रेनिंग लेने के बाद छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करे। छोटे स्तर से मतलब कम से कम 10 भेड़ों को सबसे पहले शुरू करे, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, इस तरह से।

0: चलेगा, तो मेरी गारंटी है वो अपने उद्देश्य में 100% का 100% कामयाब होगा, और उस कामयाब पुरुष को देख के या कामयाब लोग को देख के दूसरे लोग भी इस व्यवसाय में जुड़ेंगे।
1: जी
0: मेरी तरफ से।
1: जी डॉक्टर अरुण तोमर, आप निदेशक केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा से आज हमारे बीच में पधारे और जो महत्वपूर्ण जानकारियां भेड़ पालन के बारे में आपने दी, निश्चय ही इसको सुनकर जो भी हमारे सुनने वाले किसान भाई हैं, भेड़ पालक हैं, लाभान्वित होंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो आज बस इतो ही, इतनी चुकी जानकारी के साथ राजस्थान में भेड़ और ऊन विकास का नया आयाम इसके साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम को आज को टेम पूरा हुयो, तो दो थांगा भाई राजू ने इजाजत और करा राम राम सा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे ICC विमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

अब मैं आपको वो आवाज सुनाती हूँ जो भगवान हजारों हजारों सालों में बनाता है। इनकी आवाज और इनका गाना सुन के मैंने अपने गाने में बहुत प्रेरणा पाई है। ये गाना जब गाते हैं तब लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, और अपनी ऐसे लाइफ में भी हमको हंसाते रहते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग पे पहुंचते हैं इस कदर मजाक करते हैं कि हम हंसते ही रहते हैं, इतने हंसते हैं कि हमारी आवाज भी बैठ जाती है और हम बोलते हैं कि अभी किशोरदा हम हाथ जोड़ते हैं, अब आप प्लीज कुछ नकल मत कीजिए। ऐसे ये हंसाने वाले आदमी, और मेरा बेटा बिल्कुल यंग म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने जब बोला कि दादा आप मेरा गाना गाइए तो मैं डर के मारे कांप गई। मैंने कहा इतने बड़े सिंगर को अब ये छोटा लड़का क्या सिखाएगा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो सीख लेती हूँ। लेकिन उसने जैसे गाना सुनाया उनको तो कहने लगे वाह बेटे तुम अच्छा बनाते हो, और उन्होंने वो गाना गाया। और आप देखिए उसकी फर्स्ट पिक्चर का गाना और किशोरदा ने गाया हुआ।

प्रोग्राम के अंत में मैं आपको मेरी पसंद की वो आवाज सुनाने जा रही हूँ, जो सुन के शायद आप भी मेरे जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। खैर, मैं तो आज थोड़ी मंत्रमुग्ध हुई हूँ, मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, उसके तानपुरे के साथ उसकी सास सुनी है, उसका पंचम सुना है, उसकी चर्च ऊपर की सुनी है, और आज तक वो जादू मेरे ऊपर छाया हुआ है, वो उतरता ही नहीं है। और मैं चाहती हूँ इस आवाज की जादू जैसे मेरे ऊपर है, ऐसे हजारों साल तक सबके ऊपर जमी रहे। वो है मेरी बड़ी बहन, संगीत की मलिकाओं की मलिका, लता मंगेशकर। इसका ये गाना सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है। और इस गाने की बात यह है कि ये क्लासिकल ढंग पे जा रहा है, सेमी क्लासिकल है। लोग कहते हैं कि आजकल सिर्फ डिस्को ही होता है, ऐसी बात नहीं है। ये बेमिसाल का गाना सुनिए जो आरडी साहब ने बनाया है और दीदी ने गाया है। ये कितना अच्छा क्लासिकल का और नए म्यूजिक का मेल है, आप सुन के मुझे बताइए कैसे।

0: इस आवाज के बाद मैं आपको और कौन सा गाना सुनाऊं? कोई गाना नहीं है मेरे पास, कोई आवाज नहीं है, और हमारे पास वक्त भी नहीं कि इस आवाज के और भी गाने सुनाऊं आपको। लेकिन जब मुझे वक्त मिलेगा, जब मुझे ऐसा मौका मिलेगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। नमस्ते।
1: तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम महान गायिका आशा भोसले के साथ। ये कार्यक्रम हमारे विविध भारती के संग्रहालय से हमें प्राप्त हुआ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। आप हैं विविध भारती के संग।
2: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जिज्ञासा कार्यक्रम में पिछले हफ्ते से हमने सकारात्मक जिंदगी पर एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही हैं डॉक्टर योगिनी मोहरे से। वे हमें बता रही हैं कि कैसे एक अच्छी सार्थक जिंदगी जी जा सकती है और मन पर जज्बात का बोझ कैसे कम किया

0: जा सकता है, कैसे बहुत हल्के होकर और बहुत पॉजिटिव होकर जिंदगी की राहों में आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए लव यू जिंदगी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुने।
1: लव यू जिंदगी।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: मुझे ये बताइए कि बच्चों में किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं, बच्चों के लेवल पर उनके टेंशंस, माता पिता की बहुत ज्यादा उम्मीदें, एडिक्शंस, खासतौर पर स्क्रीन के एडिक्शंस, या कई बार ये होता है कि माता पिता लिमिटेड जेब खर्च देते हैं और बच्चों को लगता है पैसों की और जुगाड़ यहां वहां से की जाए, तो मम्मा के पर्स से निकाल लो, या वीडियो गेम्स के एडिक्शंस, या बहुत तरह की चीजें हैं, बल्कि स्मोकिंग जैसी चीजों में पड़ जाना टीनेजर्स का, इन सब का क्या उपाय देख रही हैं और क्या रीजन समझ में आता आपको?
2: देखो, बच्चों में एडिक्शंस बढ़ने की ना, बच्चे इतने पहले कैसे रहता था, हर एक फैमिली में एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम बच्चे थे। आजकल बहुत सारे फैमिली, स्पेशली अर्बन एरियाज में अगर आप देख लोगे तो इतनी महंगाई हो गई है, स्कूल की फीस अगर एक एक डेढ़ डेढ़ लाख है तो दूसरा बच्चा करते वक्त हर कोई काफी सारे कपल सोचने लगे कि वेदर आई कैन रियली अफोर्ड द सेकेंड चाइल्ड। तो उसकी वजह से सिंगल बच्चा है, बड़े बड़े घर होने लगे हैं, बच्चों के पास ना मोबाइल ने बहुत बुरी समस्या क्रिएट कर ली है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया भी बैन कर रहे हैं मोबाइल्स। तो देखो, बैन करना जो मुझे लगता है, अगर कोई भी, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, अगर आप कोई चीज बैन करते हो ना तो बच्चा वो पाने के लिए कुछ ना कुछ तरह से कोशिश करने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैन करने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है बच्चों को समझना ना कि इसके क्या असर होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आजकल आप देख लोगे स्कूलों में छोटे उम्र से बच्चों के चश्मे आने लगे हैं, तो अगर आप अभी से 4th-5th क्लास से अगर आपको चश्मा है तो आगे जाके तो आपका इतने कंप्यूटर और स्क्रीन पे काम होने वाले, आपके आईज खराब होने की तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो कहीं पे मुझे लगता है, क्योंकि अगेन वही होता है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी है कि बच्चों में और पेरेंट्स में वो डायलॉग, देखो जनरेशन गैप हमेशा थी, हमारे टाइम भी थी, हमारे और हमारे पेरेंट्स में भी अनबन तो होती रहती थी, आज भी होती रहती है, लेकिन वो जनरेशन गैप को भी ना हर एक चीज को ग्लोरीफाई ज्यादा किया जाता है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आसानी से अवेलेबल है, जैसे आप अगर स्मोकिंग का कह रहे थे तो जगह जगह पे आजकल पान बीड़ी वाले शॉप्स होने लगे हैं, तो बच्चों को बहुत चीजें आसानी से मिल जाती है। और कहीं पे मुझे लगता है पेरेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बच्चों को देने के लिए, तो आई ट्राई टू कॉम्पनसेट इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो भी बहुत बुरी चीज हो गई है। कि और बच्चे कैसे रहता है ना, काफी बार मैंने ये देखा है यूनिश जी कि पेरेंट्स भी कंपेरेटिव मोड में रहते हैं। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को ना आप जो सिखाते हो वो बच्चे नहीं सीखते, बच्चे जो देखते हैं ना वो सीखते, वो ज्यादा सीखते हैं। अगर बच्चा देख रहा है आपका कि मम्मी डैडी किसी और के पेरेंट्स के कंपैरिजन में है, अच्छा उसने इतनी बर्थडे पार्टी में इतना खर्चा किया तो अभी मुझे भी करना है, तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना, उसके पास इतना बड़ा वो प्ले स्टेशन या जो भी है तो मुझे भी तो वो चाहिए। और यहाँ पे भी पेरेंट्स ने ही पहले सीखना जरूरी है कि देखो, आप कितने भी बड़ा पैसा कमा लो, हमेशा देर इज गोइंग टू बी समबडी एल्स हु हैज गॉट मोर मनी देन यू। ऑफ कोर्स प्रोग्रेस करते रहो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कहीं पे अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ऐसा हूं मैं, तो फिर बच्चे आपसे जरूर वो सीखते। और बच्चों के साथ एक डायलॉग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बच्चों को मार्क्स कम मिल जाते हैं या फेल भी हो जाता है, समझ लो बच्चा, तो हम इतना बुरा बर्ताव करते हैं, हमें ये समझना है कि बच्चा भी तो हर्ट है, बच्चे को भी तो अपने से भी उम्मीदें होती है ना। देखो यूनि जी, हमें लगता है कि बच्चा छोटा है तो उसको कुछ नहीं समझता, लेकिन वो अपने लेवल पे प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है उसके मन में। तो हमें ये है कि बच्चे को एक विश्वास दे दो, डांटो यो जो भी करना है, अगर बुरे बर्ताव किया, बुरे मार्क्स ले, लेकिन उसके आगे जाकर आपको बच्चों को वो दिखाना है कि जैसे भी हो तुम, आई लव यू, कुछ भी होने दो, क्योंकि आपको पता नहीं आगे जाके क्या कठिनाई उसके लाइफ में होने वाली है। तो आपको वो बच्चों को विश्वास दिलाना, अनकंडीशनल लव जिसको आप कह सकते हो, वो आपको बच्चों को दिखा देना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले अपने आप को अनकंडीशनल लव अपने आप के प्रति दिखाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
0: आपने अनकंडीशनल लव की बात की, यहां जीवन में ईर्ष्याएं बढ़ रही हैं, क्रोध बढ़ रहा है, और इसके साथ एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी है वो है अवसाद, निराशा। मुझे ये बताइए कि इन चीजों को कैसे काबू किया जा सकता है और मन से कैसे निकाला जा सकता है ईर्ष्याओं को, गुस्से को और डिप्रेशन को।
2: कैसे होता है ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम हर कोई इंसान सेम है। अगर मुझे गुस्सा आया तो आया है ना गुस्सा, अगर मैं ये कहूंगी, मैं बताऊंगी कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो वो गुस्सा अंदर अंदर रहेगा। जो निगेटिव इमोशंस होते हैं दे अफेक्ट योर बॉडी इन अ बैड वे, और जो पॉजिटिव इमोशंस है, अगर आप भी सोच लो कुछ अच्छी बात हुई तो हमें खुशी होती है, तो वो निगेटिव इमोशंस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको हम ऐसे निकालेंगे कि उससे ना अपने आप को और किसी को तो हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, एट द सेम टाइम हमें भी अपने आप को हार्म नहीं करना है। अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं बाहर जाके दो सिगरेट पी ली, तो उससे मुझे तो नुकसान ही है ना, तो वो टेम्पररी अच्छा लगता है कि चलो मैंने सिगरेट पी ली, अभी वो पूरा वेंट आउट हो गया, मैं घर आ गया वापस। लेकिन हमें ना, जैसे हम हमारे फिलोसॉफी में दो तीन नुस्खे बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि एक तो आप ना लिख सकते हो, आपने सबने जब वी मेट मूवी देखी होगी करीना कपूर की, उसमें जैसे उसने लिखा है ना, उसका जो बॉयफ्रेंड छोड़ता है या जो भी वो फोटो फाड़ के, तो ऐसे ना आप लिख सकते हो, आपके मन में जो भी निगेटिव भावनाएं आती है ना उसको लिखो और उसके बैठ को पढ़ो नहीं। जैसे समझो, हो सकता है मुझे अपने घर के अगली कोई, बिल्कुल मेरे बच्चे पे समझ लो, या कोई भी फैमिली के एकदम बिल्कुल नजदीकी रिलेशन पे आपको गुस्सा आया है, तो हमें लगता है कि मैं उसको जाके कैसे कह सकता हूँ ना, फिर वो घर के माहौल और बिगड़ जाएंगे, या मम्मी डैडी बड़े हैं, सास ससुर बड़े हैं उम्र में, तो उनका तो हमें रिस्पेक्ट करना ही, लेकिन गुस्सा तो है मुझे, तो गुस्से को तो निकालना बहुत जरूरी है, राइट? नहीं तो वो गुस्सा जाके आपके बॉडी को, आपके मन को असर करेगा ही करेगा। तो ऐसे टाइम पे आप एक पेपर पे पूरा, कभी कभी तो आपका मन करता है कि गाली भी देने के मन कर सकता है आप किसी भी वो बंदे को, तो पूरा एक पेपर पे निकालो, लिखो और वो पेपर को फाड़ दो, ना कि बैठ के उसको पढ़ो दो चार चीज दिन प्रिजर्व करो, देखो मुझे ऐसे इतना बुरा हुआ मेरे साथ, नहीं। वो क्योंकि वो तभी का तभी वेंट आउट है, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमें अपने निगेटिव इमोशंस को निकालना है। या फिर आप घर में दो तीन बड़े पिलोस ले लो और उसको बीट करो, बिल्कुल ऐसे ना जैसे किसी के साथ फाइटिंग कर रहे हो, आप ऐसे सोच लो कि वो बंदे को हम मार रहे हैं, लेकिन वो पिलोस को मारो, अपना वो गुस्सा निकालो अपने से। और इसमें ना, जैसे किसी को लग सकता है नहीं, बट somebody who believes in energy, तो ऐसे किसी को लग सकता है कि by doing all these things are we sending negative energies towards that person because we love that person। समझो आपका बच्चा है तो you love your child, लेकिन आपकी वो बात सुन नहीं रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो आप कोई भी किस्म की negative energy वो बंदे की तरफ नहीं भेज रहे हो, इस इज जस्ट द पॉजिटिव वेंट आउट फॉर योर निगेटिव इमोशंस। तो एक तरीका वो हुआ, या फिर आप गाड़ी में बैठो या बेडरूम में कहीं पे भी जोर से चिल्लाओ, वो निगेटिविटी बाहर निकल, किसी और नहीं सुनेंगे तो वो और शायद डर भी जाए, लेकिन अपने आप के वो अंदर से निकालो, या शीशे के सामने खड़े होके वो बंदे से बात करो, रोना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप में जो सुनने वाले हैं उनको मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, प्लीज ये घर में ट्राई करो, निकालो अपने अंदर से निगेटिविटी और देखो बहुत आपको हल्का महसूस होना लगेगा।
0: आपने इतने सारे उपाय बताए जो थोड़े से सामान्य जिंदगी से अलग तरह के उपाय हैं, जैसे कि कागज पर लिखा जो कुछ बुरे बुरे ख्याल सामने वाले के बारे में आ रहे हैं, या जो तकिए पे मारा, या अपने भीतर का जो आक्रोश है वो चिल्ला कर व्यक्त किया। अगर ये सारे इमोशंस हमारे मन के अंदर रह जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के ही वो व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में एसिडिटी बढ़ती जाती है, किसी दवा से ठीक नहीं होती है और दवाइयों की टोकरी बड़ी होती चली जाती है उनकी?
2: बिल्कुल, सिर्फ बीमारियां नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हिटलर ने इतना बड़ा भयंकर प्रलय किया, लेकिन हिटलर की लाइफ क्या थी हमें पता नहीं है। कोई भी बुरा बंदा, बुरा से मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ हिटलर का बिहेवियर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा कोई बुरा बर्ताव कर रहा है या कुछ बीमारियां चल रही है जिसका कुछ डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कहीं ना आप अंदर इमोशंस बहुत लेके घूमते हैं, तो जब तक हमें इमोशंस नहीं निकालेंगे तब तक ये तो ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो अनबन तो होती रहेगी, अगर नहीं तो फिर हम इंसान ही नहीं है, फिर हम भगवान है, तो ऐसे तो नहीं है। सामने वाले कोई भी रिलेशन में हो, फिर वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, अनबन तो होती रहेगी। और एक चीज आपको बहुत जरूरी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमें ना ग्रैटिट्यूड, हमें कृतज्ञता दिखानी है अपने आप की तरफ और जो भी चीजें है उसकी तरफ। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जब हम भगवान को थैंक यू कब कहते हैं, जब कुछ बड़ा सा अचीव कर लेते हैं तब, तो वो बड़ा सा अचीव रोज नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस पे आप अगर छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहना शुरू करोगे, वो फॉर्मेलिटी लगती है। काफी बार ये लोगों को लगता है हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता, हम माँ बाप को कहाँ थैंक यू कहते हैं, माँ ने अच्छी रोटी बेल ली तो हम माँ को थैंक यू नहीं बोलते। मन में बोलो, माँ को ना भी बताना बता सको, क्योंकि वो होता है कि अरे माँ कहेगी क्या बेटा तू मुझे थैंक यू, लेकिन मन में अगर आप वो ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करोगे अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, जो भी चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं उसके लिए, तो उससे भी ना आपका टोटल, आपका जो माइंडसेट है वो जरूर चेंज हो सकता है।

0: जीवन में ग्रेटिट्यूड अमूमन नहीं होता है। ये जो ग्रेटिट्यूड है ये जीवन को कितना पॉजिटिव और कितना हल्का बना सकता है हर उम्र के लोगों के लिए।
1: बहुत ज्यादा, कैसे ना, आप ये है कि जो हमें नहीं है ना हमारे पास, वो चीज पे हम इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं योनुजी, कि हमारे पास 50 हो, मतलब आप बहुत बुरे कंडीशन में हो,
0: बड़ी गाड़ी नहीं है,
1: बड़ी
0: बड़ा
1: गाड़ी
0: घर नहीं है,
1: कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ना। आप आज से, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर एक जो भी सुन रहा है ना हमें, वो एक चीज ढूंढना शुरू करे हर एक दिन में, एटलीस्ट एक चीज ढूंढो कि जिसके लिए आप शुक्रिया, कोई भी होने दो, या फिर आपने आज अच्छी रोटी बेल ली, अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो कि क्या तुमने रोटी बना ली है, बहुत बढ़िया, या कुछ भी सिंपल से सिंपल चीजें कह लो उसके लिए। जैसे ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो आपकी, देखो आप बड़े से समझ लो, जैसे टाइटैनिक जैसी बड़ी शिप है, इट इज सेलिंग थ्रू द ओशन, मतलब डीप सी में है बिल्कुल, तो वो एकदम से दिशा चेंज नहीं होती है। अगर वो कैप्टन को शिप के डायरेक्शन चेंज करने, तो वो स्लोली ग्रेजुअली होने वाली है, राइट? सो आप जैसे अपने आप को या अपनी फैमिली में अपने आजू बाजू के लोगों को जैसे ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, जैसे वो आपके द टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर निगेटिव इमोशंस, आपके जैसे आप ख्याल चेंज करोगे ना, आपकी जिंदगी स्लोली चेंज होती है। ये एक दिन में नहीं है, ऐसे मत सोच लो कि अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि मैं जैसे शुक्रिया कहना शुरू करूंगा मेरी तो जिंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला। ये दवाई नहीं है बुखार की कि हमने आज खाली कल बुखार गया आप ऑफिस पे चले गए, लेकिन इसका जो आप पे असर होगा ना वो परमानेंट होता है। आपको देख के आपके परिवार वाले सीखते हैं, आपके ऑफिस वाले सीखेंगे कि भाई तू आजकल कर क्या रहा है, तू अपने आप में मस्त रहता है, और वो मस्त रहना ना कि यू आर हाई ऑन एडिक्शंस, यू आर हाई ऑन लाइफ।

लव यू जिंदगी, इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। इस श्रृंखला में डॉक्टर योगिनी मोहरे से आपका ये दोस्त यूनुस खान बातचीत कर रहा है। ध्यान रहे, इस श्रृंखला की तीसरी और आखिरी कड़ी आप सुनेंगे अगले हफ्ते जिज्ञासा कार्यक्रम में। जिज्ञासा।

0: जिज्ञासा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं

0: कहानी पिंजर, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैदक सिखाना चाहा और इस काम के लिए एक जगत के अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरा नवीन गुरु केवल देशी वैदक में ही चतुर न था बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा यानी कि हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था कि इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत ना हुआ और सर्वदा यही कहता रहा कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गृहस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, इसलिए नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वो मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वो विद्यमान था किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अनंत में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने आरंभ हुए। मैं हृदय में सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता है मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्नों के कारण काल्पनिक आवाजें आ रही हैं। लेकिन पांव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर से पूछा, कौन है, कौन है यहाँ? ये सुनकर वो अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूं, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूं। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, ये कौन सा समय पिंजर देखने का है? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई, मुझे असमय से क्या अभिप्राय, मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं इसे देख सकती हूं। आ, क्या तुम नहीं देखते, ये मेरी पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 बरस इस घोंसले में बंद रही, जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें क्या बाधा हुई?
1: मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वो यहाँ से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो टलने वाली न थी, कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, लेकिन विवशता से उत्तर दिया, हाँ अच्छा अच्छा तो बैठ जाओ और कोई कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो। 25 बरस बीते, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी, लेकिन अब श्मशान के शून्य स्थान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्यों से बात करूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं? ये कहकर वो आगे की ओर आई और मुझे मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पांव के पास बैठ गया है। फिर इससे पूर्व कि मैं कोई शब्द मुख से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर। वो बोली, महाशय जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वो व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वो था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वो व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने न देता था। अच्छा था उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही वो संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णो रीति से क्रियाकर्म किया, लेकिन हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से, जिनके साथ खेला करती थी, मिलूंगी। लेकिन अभी मुझको मायके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आ गया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको तो इसके हाथ और पांव के चिन्ह देखने से मालूम होता है कि ये लड़की डायन है, डायन। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद है, वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद मुझे अपने पिता के यहां जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वो वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहां प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में कहते हुए सुना कि मैं सुंदर युवती हूं, पर तुम कहो, सुनो तुम कहो ना, तुम्हारी क्या सम्मति है? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा ही नहीं, मैं कैसे सम्मति दे सकता हूं? जो कुछ तुमने कहा ठीक होगा, ठीक। वो बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन दो गढ़ों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चहुओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी कल्पना न कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वो दिन याद है जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थी। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। ये वही बाहें थीं जिसको मैंने दिखाई, अपनी ओर आसक्त कर लिया। संभवतः सुभद्रा को भी ऐसी बाहें नसीब न हुई होंगी। मेरी कोमल और पतली उंगलियां मृणाल को भी लजाती थीं। खेद है कि मेरे इस नग्न ढांचे ने तुम्हें मेरे सौंदर्य के विषय में

वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेकों बार सोचा करती थी कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है, यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती, संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। अब ये संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विफल करते हैं कि आह क्या था और मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था, जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वो हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसको एक दिन देख ही लिया और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से सर्वथा अपरिचित, वो कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करता। वो मौन प्रिय और एकांत में रहा करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार से अलग होकर एकांत प्रिय बन गया और साधु महात्माओं का सा जीवन वो बिताने लगा।

0: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आज आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी में। कहानी में वाचन स्वर था आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊंगा से, आवाज शिल्पा राव, अंतरानंदी, फहीम अब्दुल और रिशाद कामिल की थी। गीत के बोल रिशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से। आवाज़ें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
1: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
2: विविध भारती पर हर पल है खास।
3: आज के मेहमान
0: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार।
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
4: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल और संगीत विशाल मिश्रा का ही था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली हुई गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया।

0: किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म तमाशा से। आवाज मोहित चौहान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर रोही चूलिया।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
3: जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाजें आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण की थी। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत AR रहमान का।
1: सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाज सोनू निगम की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।
1: धरती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: झीलों के शहर में रहने का ख्वाब कितना मीठा और सुहाना होता है ये तो आपने सुना, लेकिन ये भी आपको बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा मूल रूप से कश्मीर के ही हैं, इसीलिए शायद इनकी फिल्मों में हसीन वादियों की लोकेशन ज्यादा होती हैं।
1: और पढ़ाई लिखाई भी वहां हुई, कॉलेज भी वहां हुआ, सो अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूं मैं, कश्मीर से हूं और कश्मीर में ही मेरी कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया था।

समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दो ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो हैं।

हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह, मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहां कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूंगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो, और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो, और वो ऑप्ट करे यहां आना, तो वो बेवकूफ ही नहीं, गधा है बिल्कुल। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ।

0: दोस्तों, विनोद चोपड़ा का घरेलू नाम है विधु, जिसको मिलाकर यह कहलाए विधु विनोद चोपड़ा। यदि आपने इनकी कोई फोटो या तस्वीर देखी हो तो निश्चित ही आप भी मानेंगे कि ये काफी हैंडसम हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म निर्माण और निर्देशन की बागडोर ही क्यों संभाली, इसका भी एक राज है।
1: मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं, ये ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल। उनके धागे तो किसी और के हाथ में, जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहाँ धागे जो हैं उन एक्टरों के, वो हमारे हाथ में।

विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही चुनिंदा फिल्में बनाई हैं। फिल्मकार के रूप में उनका नजरिया लीक से हटकर है, अपनी बात को फोकस करने का उनका अपना अंदाज है। 1942 ए लव स्टोरी से ही उन्होंने ये बात साबित कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा ने जब फिल्मों में आना तय किया, तभी ये सोच लिया था कि फिल्म मनोरंजन का मीडिया तो है, लेकिन इसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए कैसे किया जाए, इस बात में सावधानी बरती जाए तो यकीनन फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उनकी हर फिल्म में एक नया विषय जरूर होता है, चाहे वो फिल्म मिशन कश्मीर हो, 42 ए लव स्टोरी हो, परिंदा हो या हो करीब, सभी में एक नया एहसास उनकी फिल्मकारी का आपको जरूर मिलता है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस। इसके मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने कई समस्याओं को फिल्म के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। लोगों ने उनके बात कहने के इस अंदाज को भी बहुत बहुत पसंद किया है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने भी काफी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया और ये फिल्म भी एक मिसाल बन गई।

0: और दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी थ्री इडियट्स, देखी होगी आपने और मजा भी लिया होगा।
1: आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ये ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल।

सन 2014 में विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी फिल्म पीके। तुझे तक

0: आज का ये प्रोग्राम आज के फनकार केंद्रित था निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं, मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है, तो कभी किसी की याद का। कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है, तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

चांद की तरह है। वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है, लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।